मेराम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हमारे ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए, और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

0: गया
1: और परमान श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद फिल्म का नाम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं फिल्म के नाम है कुर्बानी ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों और हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं कैसे

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है, दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग, और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग, फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो, और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वारे दोस्तों की तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बम्बई का बाबू 96 का मूवी है और क्लासिक सॉन्ग है। और इफ बम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

और दिखा मैनी भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखे हुए किसी को ज़बाना गुजर गया है, देखे हुए किसी को ज़माना गुजर गया है, और जब किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जब अगर दिल के अरमान जो है वो जब टूट जाते हैं तो आंसू बनकर, आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जब कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम

0: सोचो कभी ऐसा हूँ तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम।
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एतर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं न सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्लस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते ही, नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर, और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों, मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर, और मूवी के नाम है चोरी, और चोरी चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा दादा नहीं परमा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

आजा आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेंगे तो बहारों में फूल बरसेगा, और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही। आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। जब किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही। ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैथी मुकेश, नाइटी गिल, लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीनत अमन मनोज कुमार ने काम किए हैं, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आंभ को, मैं भी आंभ को कभी नहीं भूलूंगा। जब आंभ हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आंभ को कैसे भूलेगा। हमारी यारो की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आप की अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैतिक लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर जोकर, तो आओ मिलकर सुना जाए।

और जाने कहां गए वो दिन, फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर, नहीं करने वालों से ही पता का ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है। तो दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी से सेवा करेंगे और पुरानों गीतों की भान प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि वो शमा ही महफिली क्या, वो शमा ही महफिले क्या, वो शमा ही महफिले क्या जिसमें दिल खाक ना होए, वो शमा की महफिले क्या जिसमें दिल खाक ना होए। मजा तो तब है चाहत का जब जब दिल तो जले पर राख ना होए। हमारे यारो ये कहते हैं मुस्कुराना सिखाना पढ़ा है, मुस्कुराना सीखना पड़ा है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। हमारे सुनने वालों तो हम चलते हैं गीत की ओर, वो है शंकर जयकिशन का ये सॉन्ग है और यहाँ बताए गए है हसरत जयपुरी का और परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है। मूवी के नाम है राजी कुमार।

बुलाएंगे तो जॉनी कैसे नहीं आएंगे, तो कहते ही तुमने पुकारा और हम चले आए, प्यार भरी मस्त भरी और लवली सॉन्ग आप सबके लिए हम चलाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा नहीं है कि अब तेरी मुझको जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं है कि अब तेरी मुझको जरूरत नहीं और जरूरत नहीं, बस टूट टूट कर अब बिखरने की हिम्मत नहीं रही, ऐसा नहीं है कि तेरे पीछे, ऐसा नहीं है कि तेरे पीछे तेरी याद आती नहीं, बस अब फूट फूट कर रोने की हिम्मत हिम्मत ही नहीं रही। हमारे यारों की कहते हैं कि याद ऐसे करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतनी करो कि शक ना हो, इंतजार इतनी करो जॉनी को कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसे करो कि नफरत और नफरत ना हो हमारे यारो, और जब नफरत नहीं होगा तो पल भर के लिए तो थोड़ा हमसे प्यार कर लो ना। और किशोर कुमार का रोमांटिक फॉल सॉन्ग और देवानंद हेमामालिनी का जॉनी मेरा नाम फिल्म का नाम है, वैसे तो जॉनी हमारा नाम भी है लेकिन यहां फिल्म के नाम है जॉनी मेरा नाम का ये सॉन्ग किशोर दादा, और ये गीत को यहां से हम चलाते हैं।

करी। तो दोस्तों पल भर के लिए जॉनी से आपको भी प्यार करना तो चाहिए ना, कि कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि कहते हैं कुछ अलग ही करना है, कुछ कहते हैं कि अलग ही करना है। तो वफा करो मेरी यारो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करो मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफाई तो हर कोई कर देते हैं ना हमारे यारो। और कहते हैं कि दर्द जो तूने दिया वो गहरा दिया, दर्द जो तूने दिया वो गहरा दिया, करके वादा तूने हमको करके वादा, जी हाँ दोस्तों करके वादा तूने हमको भुला दिया, जख्म देने वाले तेरे भी शुक्रिया, जख्म देने वाले तेरे भी शुक्रिया, जो जिंदगी का तूने मतलब सिखा दिया। तो यारो उसके बाद तो हम चलते हैं मैथी मुकेश पद्मराज श्री मोहम्मद रफी और नैथी गिल लता जी के साथ साथ किशोर दादा की ओर भी। फिल्म के नाम है अमर अकबर एंथनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्टर है। आओ सुना जाए।

और हमको तुझसे और प्यारे, हमको तुमसे कितना प्यार है नाइटी गिल लता जी, परमा श्री मोहम्मद त्रिवी जी और यानी कि और माइति मुकेश इस गीत को गाया है और फिल्म के नाम है अकबर, अमर अकबर एंथनी का ये निकाला हुआ जोंग है। तो कहते हैं हमारे यारो कुछ अलग ही करना है ना, अभी तो कहा है, और उसके बाद कहते हैं काश वो मुझे जीने से लगा कर मेरी सारी शिकायत दूर करते, काश वो मुझे सीने से लगा कर मेरी सारी शिकायत दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हुआ हो और मुझे वो इतना मजबूर कर देते। और कहते यारो कि हम तो समझते थे कि सखाए हैं पर जगाएगा, क्या खबर थी कि रोज दिल में उतर जाएगा, ठीक लेकिन और ठीक लिखा था मेरी हाथ की लकीरों में कि तू अगर प्यार करेगी तो बेकार जाएंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं कि ओ मेरे क्या दोस्तों, ओ मेरे राजा के बात है, और जो राजा जो है तो रानी तो राजा को जरूर बुलाए। फिल्म के नाम है वादा तो निभाया करो ना, जहां भी हो आपको वादा जो है कभी तोड़ना नहीं। आशा जी किशोर दादा ने इस गीत को गाया है, देवानंद हेमामालिनी ने काम किया है, और एक बार फिर जॉनी मेरा नाम, वो तो मेरा नाम है लेकिन यहां फिल्म के नाम है जॉनी मेरा नाम का ये गीत है जो आपको हम यहां से और सुनाते हैं, जिसमें देवानंद हेमामालिनी ने काम किया है हमारे यारों।

और अगर वादा करना है तो वादा निभाना भी जरूर करना, क्योंकि वादा तोड़ना वो तो जरूर कुछ नहीं बहुत बुरी बात है। कि कहते हैं ये खुशबू ये हवा आपकी हुई, ये खुशबू ये हवा आपकी हुई, मौसम की हर एक अदा आपकी हुई, दिल की चाहा दिल ने चाहा कुछ खास तोहफा दो आपको, चलो आज से मेरी हर दुआ आपकी हुई। हमारे यारो और प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं कि एक बार और कहते हैं कि हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता है, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता है, सिखवा करो तो उन्हें मजाक लगता है। कितनी जिद्दत से हूँ हम उन्हें याद करते हैं, कितनी जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। हमारे यारो और वादा के बाद हम चलते हैं, हम बने हैं और तुम किसके लिए ये बने हैं, अगर हम आपके लिए बने हैं तो आप किसके लिए बने हैं, जरूर एक दूजे के लिए बना होगा। और ये गीतों का मौसम और प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं, फिल्म के नाम है एक दूजे के लिए, और नैतिल गिल लता जी और एसपी बे यहाँ पे लिखा हुआ भाई जो इस गीत को गाया है।

और तुमने और किसके लिए हम बने हैं और किसके लिए हम बने हैं। और ये बांध जरूर अपने आप को सोचना कि आप किसके लिए बने हैं। एक दूजे के लिए तो जरूर बना होगा कि कहते हैं कि दुनिया को हकीकत, दोस्तों दुनिया को हकीकत मेरी, दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं है। जॉनी कहते हैं कि दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है पता ना सकोई, सारी सारी पाने भरी है और लिखे ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। हमारे यारों कि कहते हैं दर्द क्या होता है, दर्द दर्द क्या होता है, बताएंगे किसी रोज अपनी दिल की गजल, सुनाएंगे भी हम किसी रोज, उड़ेंगे उठने दो परिंदों को खुली फिजाओं में, उड़ेंगे तो परिंदों को खुली फिजाओं में, हमारे होंगे तो लौट करे, लौट करे जरूर आएंगे किसी रोज। हमारे यारो तो हम चलते हैं जिस देश में, कौन देश में गंगा बहते हैं दोस्तों, हम उस देश के बांध करते हैं जो जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ दोस्तों, और मूवी का भी नाम है जिस देश में गंगा बहते हैं। तो आशा भोसले, लता मंगेशकर इस गीत को साथ में गाए हैं। और एक लड़की कि एक दूसरे लड़की के साथ क्या कहते हैं, आओ सुना जाए।

क्या हुआ और तुझे मुझे क्या हुआ और क्या हुआ दोस्तों। और अगर दिल मचलते हैं तो प्यार तो होता ही है कि कहते हैं मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद बाकी है कि कहते हैं होंगे लाखों महफिले दुनिया में, मगर तेरे दिलदार जैसा सुकून कहीं नहीं है। और जो गीत हम आप लोग को सुनाएंगे वो क्या है, तो कहते हैं कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यूं रूठा न करो हमसे, पागल सा बच्चा हूँ, मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरा ही दीवाना हूँ, बहुत प्यार से इस गीत को आओ सुना जाए।

दौर दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, बोले चली कहीं और दूर जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल कर रखना, को खोकर भो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता हमारे यार। और नया नया गीत के मजा भी कुछ और है, तुम ही हो आशिक तू, तुम ही हो आशिक तू, आओ सुना जाए।

और दोस्तों ऑनली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर और वो है फिर भी प्यार करने वालों के लिए कि बिली बिली की ओर हम जाते हैं।

और ऐसा ही लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो हमारे यारो ऐसा ही होता है।

और चल चले झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है और फिल्म के नाम है झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी, धर्मेंद्र मुमताज इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों,

और यह फिल्म का नाम है, फिल्म के नाम है मेरे ख्याल से पहचान, और आओ मिलकर सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और पैसे की पहचान यहाँ, और इंसान की कोई कीमत नहीं है, और बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं है। और ये गीत जो हम चलाते हैं वो है राजकुमारी गजराज ते हैं, ये गीत है माइती मुकेश, इस गीत को गाए और मिलकर सुना जाए, चल अकेला चल अकेला।

0: अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल कर माई थी मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग है।
1: मित्रों सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावें कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है

और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे। वाह वाह, क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार पास हो गए। तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं हूँ संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। सभी जिनके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, नया परिवार जो आए हैं परिवार में, तो आप सभी को हार्दिक से बधाई दिया जाता है। सभी जो अपने काम की तैयारी के ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और ये भूलना मत कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा संदेश रखा था कि हम ये ना सोचे कि हमारे देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पर हम जरूर ये सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सभी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं स्कूल यानी कि अपना ज्ञान के ओर पढ़ने के लिए, तो माँ सरस्वती को आपको भूलना नहीं चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। जरूर माँ सरस्वती का ध्यान दे करके और निकलना।

और जो सफर पे आए हैं हमारे देश में, तो आपको एक फाइन वैकेंसी टू हॉलैंड्स। हॉलैंड एक सुंदर देश है जहाँ पर लगभग 18 मिलियन व्यक्ति रहते हैं और यहाँ कुछ 23 मिलियन साइकिलों भी होते हैं। हर एक घर में साइकिल जरूर होते हैं। तो अगर आप हॉलैंड में आए हैं तो जरूर आप कुछ उसके बारे में यानी कि थोड़ा से शेयर करके जाना। इसी प्रकार से अन्य शहरों जैसे हीथोरन है जो बनाया गया है, जहां पर रास्ते नहीं पर पानी के माध्यम से लोग अपने कार्य काम करते हैं, तो वो ऐसा स्थानों को जरूर देख के जाना।

जो कुछ 200,000 के तादाद में हॉलैंड में रहते हैं, तो तनहाख जैसा शहर में 3-4 मंदिरों है। अलमेर में मंदिर है और विष्णु मंदिर के नाम से, गोल्डन टेंपल के नाम से बनाया गया है एक इतना सुंदर मंदिर तनहाख में, जो कि जा कर के राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर और इसी प्रकार से और भी मंदिरों है। रोटरडाम शहर में शिव मंदिर, राम मंदिर और भी मंदिरों जो वहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से जाकर के अरनहेम में भी मंदिर आप पाएंगे। वहाँ हर रविवार को 2 से 5 बजे तक मंदिर लगाया जाता है। तनहाक में जो कि जाकर के राधे कृष्ण मंदिर जो 6 से और 8 बजे तक लगाया जाता है। तनहाक में खासलान देव मंदिर को, जहां हर रविवार को 2 बजे से कार्यक्रम 5 बजे तक लगता है। इसी प्रकार से अम्स्टरडाम शहर में द राधे कृष्ण मंदिर जो उस दौरप में है, और वो भी सुबह में हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक हर रविवार को लगाया जाता है। सभी सेवकों जो मंदिर में सहयोग देते हैं,

इसी प्रकार से हॉलैंड में कितने स्थानों हो जो कि आप देख सकते हैं हेविल बसिंस आर्दन इन नीदरलैंड, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

कि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। तो पहला भजन की ओर हम बढ़ेंगे आपके साथ जुड़े हुए।

गीत तेरे लिए राधा, ये सुंदर सा गीत का जो 2025 में गाए गए है स्वस्ति मेहुल के आवाज में, सुंदर सा गीत को और सुनते हुए हम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और मीना जी ने एक संदेश को और रखे हैं व्हाट्सएप पे, और संदेश इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हाथ के लकीरों भी कितना अजीब है, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं रहती है।

ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए।

सुनने वालों, ये जरूर कहना चाहूँगा कि भाग्य से जितना ही अधिक उम्मीद रखेंगे वे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास।

एक ऐसा दिन बनाइए, अपना मित्र को ऐसा सोचिए कि रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भारत संभाई। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जैसे हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के साथ।

अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है।

किसी संत ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए।

समय अवस्मरण, सात समय अवस्मरण दुनिया की सबसे अच्छे भेंट है। सुप्रभात कहते हुए मैं अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

प्रकाश गांधी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कनक भवन के अंतर्गत में हम सुने। सुनने वालों, अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने को जाए तो कनक भवन भूलना नहीं, क्योंकि उसका वृतांत तो बड़ा कठिन है। पुराने समय के बात है, अयोध्या में कोई ऐसा स्थान था जहां लोग बहुत कम जाया करते थे। मंदिर कनक भवन जो थे उसका कर्ता धर्ता श्री राम प्रसाद जी कोई प्रकार से, और जो आरती और जो चढ़ाव आता था मंदिर में उसी से सभी संतों और वहां का सेवकों का खाना पीना और होते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन मंदिर दर्शन करने को कोई नहीं आए, वहाँ कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला था। कोई आए ही नहीं तो चढ़ाव मिलेगा कैसे? पर सभी सेवकों और संतों जो मंदिर से है और उनका तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो राम प्रसाद क्या कहते हैं अपने एक चेले से कि जो जहाँ से रोज का और राशन लाया जाता था, एक बनिया जिनका नाम पलटू बनिया था, और कहते हैं अपने चेलों से जाकर के वहाँ पलटू बनिया के पास इस बात को कहो कि आज कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला है, हमें कुछ राशन मिल जाए तो हम बाद में जो पैसा मिलेगा उन्हें भर देंगे। पर पलटू बनिया में ये था कि हम किसी को कर्ज नहीं देते, कर्जे पे नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के जो चेले थे बहुत गुजारिश किए, फिर भी पलटू बनिया ने कहा कि कर्ज में हम कुछ नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के चेलो वापस जा करके राम प्रसाद जी से ये संदेश सुनाते हैं कि पलटू बनिया ने कहे कि करस पे हम कुछ नहीं देते हैं, जो लेना है तो नगद ले लो। राम प्रसाद जी बस यही कहते हैं जो भगवान की इच्छा। और इसी प्रकार से उस दिन संतों और सेवकों बस जल पान करके और सो गए। पर कनक भवन में एक नियम था, सभी जो रात को राम जी के आगे बैठ करके और उन्हें भजन को सुनाते हैं, सभी संतों और सेवकों सो गए, पर राम प्रसाद जी रोज का कार्य अपने करने लगा, जा करके राम जी के पास बैठ करके और भजन करने लगा। और इसी प्रकार से जब अपना कार्य कर चुके तो रात को एक चादर उड़ा दिया जाता था।

भगवान को चादर ओढ़ा करके राम प्रसाद जी भी सोने को चले गए। रात व्यतीत होता है और कुछ रात के सुबह होने को आ रहे हैं। पलटू बनिया के दरवाजा पे ठोका जा रहा है। कहा जाता है कि पलटू बनिया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और इस बात को सुन करके पलटू बनिया के लगा कि कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। मन में यही आशा लेकर के पलटू बनिया निकल रहे हैं कि अभी डांटूंगा ये बच्चों को, इतना रात हो गए हैं और अभी बाहर खेल रहे हैं। जैसे पलटू बनिया दरवाजा खोलते हैं तो वहां देखते हैं चार चार सुंदर सुंदर युवा यानी कि बच्चे दरवाजा पे खड़े हैं और कहते हैं दरवाजा खोल। और जैसे दरवाजा खोलते हैं पलटू बनिया सभी अंदर आ जाते हैं। बच्चे इतना सुंदर था पलटू बनिया, उसे देखते देखते मोहित हो गए। और बच्चे क्या कहते हैं पलटू बनिया से कि आज तुमने राशन राम प्रसाद जी के नहीं दिए हैं। देखो एक चादर जो चारों बच्चे ने ओढ़े थे, और वो पलटू बनिया के इशारा से दिखाते हैं कि देखो ये चादर में कुछ और पैसे बांधे हुए हैं, इसे लेकर के और आप जरूर से जरूर राशन राम प्रसाद जी के पास भेज दीजिए। पलटू बनिया देखते हैं चादर एक कोने में गांठ बना करके ढेर सारे पैसे बांधे हुए थे। पलटू बनिया देख करके हैरान हो गए और कहते इतना में तो हम साल भर राशन नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत सा पैसा है। पर वो बच्चे क्या कहते हैं, कहने के तात्पर्य ये है कि पलटू बनिया का दुकान बस एक छोटा का किराने के दुकान थे और उनमें। और तभी बच्चे कहते हैं कि आप इतना हैरान मत हो, आपको बस रोज थोड़ा सा जितना राम प्रसाद जी के इच्छा है उतना ही राशन बस दुकान पे भेजना है। इसी बात पे और बच्चों फिर चले गए। अब सुबह जब होते हैं तो पलटू बनिया अपना गाड़ी में सामान भर करके और आ करके राम प्रसाद जी के पास पहुंचते हैं। राम प्रसाद जी देखते हैं पलटू बनिया ढेर सारे सामान राशन आदि लेकर के पहुंचे और वहां जाकर के राम प्रसाद जी के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने रात में क्यों बच्चों को भेजे, हमें तो क्षमा कर दो, हमने गलती कर दिए हैं और आज से आपके लिए और रोज राशन पहुंचा दिया जाएगा। राम प्रसाद जी कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा मैं तो कोई बच्चों को नहीं भेजा था। पलटू बनिया ने तभी सारा कथा का वृतांत राम प्रसाद जी को और सुनाते हैं। राम प्रसाद जी ये कथा को सुन करके और समझ गए और जाते हैं और भगवान राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सदैव आपके सेवा में लगे हूँ, पर आज आपने ये संदेश हमें रखे कि आज हमें आप दर्शन नहीं दिए और ये पलटू बनिया का दर्शन दे करके भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। और होता है क्या, पलटू बनिया भी वहाँ जा कर के इस बात को समझ गए कि जो चार बच्चे के रूप थे वो स्वयं भगवान अपने भाइयों के साथ वहाँ जा कर के उपस्थित हुए थे। दोनों साथ मिलकर के
और रोते रोते भगवान के चरणों में। और तभी राम प्रसाद जी जो बेहोश हो गए यानी कि मूर्छित हो गए, और उनको स्वयं माँ सीता ने अपने ओर से उनके टीका लगाए और जा कर के राम प्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुआ और आज तक कनक भवन का टीका बहुत मान्यवर कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ सीता जी का आशीर्वाद है। तो सुन वालों, अगर आप राम जी का दर्शन करने को जाए अयोध्या में, तो ना सिर्फ राम जी का दर्शन पर कनक भवन, हनुमान भगड़ और इसी प्रकार से जमुना जी के आरती, भरत जी जो गुफा में और 14 वर्ष बैठ करके और तपस्या किया था, वो स्थान जहाँ पर अयोध्या में हनुमान जी जब पहाड़ लेकर मौस जीवन जो लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण जी के अंतर्गत, और भरत जी ने बाण मारे थे, सभी स्थानों को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सूर्य मंदिर जो बनाया गया है, जरूर देख के आना।

0: एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान
1: की जय।
0: ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है, ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्रि सूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मास दिवस का दिवस है वो मर्म न जाना कोई, रवि समेत रथ क्यों निशा को निर्भुल। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्रि सूर्य भगवान का रथ आ रहा था, श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष हो सकता था। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश कुमारी में रोक दिया, राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के एक महीने समस्या किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना कितने मनुष्य थे। राम जन्म समय जाने ब्रह्मादि पधारे, धाये सूर्य चर विमान देव वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नियोर धारे। भगवान राम संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे, देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ सरजू जी का जल दूध के सामान निर्मल उज्जवल धारा बहने लगी। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं, ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है। इसलिए सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, एक महीने के शुद्धिकरण हो जाए जो हिंदू में नाम रखा जाता है। 1 मार्च का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मार्च 1 दिन का। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जंगल था, इसी के जल से राजा का कुछ दूर हुआ, शिकार को नहीं किए चले गए अयोध्यापुरी। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित के दर्शन होता है, इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया तो मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360,989 मंदिर पाए, सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वो बेदी बनाई। नीचे आरती घाट जिस पर आरती होती घंटा बना हुआ है, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 कोठों का जल इस कुंड में डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं त्रि सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, 7 बार जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्रि सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, सो 360 कोठ यात्रा का फल मिलता है। दोनों कुंड अग्र कुंड, ईश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, प्रजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मणि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्न कुंड, ईश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इतना लेकर के 360 कोठ का मस्तक। तीर्थों में 2 स्थान पौराणिक हैं। सबसे प्रथम माँ सरजू जी जो भगवान राम जी के जन्म के 6 लाख वर्ष पहले से बह रही, श्री गुरुवर्षी जी महाराज की देन है, जो कि अयोध्या में सरजू जी विद्वान। रामायण में दोनों का वर्णन है, बालकांड में सूर्य कुंड का वर्णन लिखा हुआ है, उत्तरकांड में माँ सरजू जी का वर्णन है, जो भगवान राम जी ने अपने मुखारविंदों से माँ श्री सरजू जी का वर्णन किया। श्री अवधपुरी समझ लेते हैं आप लोग ना, श्री अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर ऋषि सरयू गए पावनी, जो मंजई सो विनय प्रयासा, मम समीप नरे पावही वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासे, मम धाम दापुरी सुख राशे। बोले मुनि सुनि प्रभु की वाणी, धन्य अवध जही राम बखानी, अवध शरीक प्रिय नहीं और कोई, जाने यह प्रसंग कोई कोई, यद्यपि है वैकुंठ बखानी। अति सुंदर है, क्योंकि मेरी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सलिला सरिता पावनी वशिष्ठ पुत्री नेत्र जात्री सरयू कुमारी की बहती कैक नाम है माँ सरजू जी का, जो कि पाप को जलाकर भस्म कर देती हैं। जो भी मनुष्य श्री सरजू जी में स्नान करते हैं, श्री सरजू जल को मस्तक पर लगाते हैं एवं सरजू जल को चरणामृत लेते हैं, सो मनुष्य तपस्या के बिना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरी अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी बात करने वाले प्राणी सो मुझे मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरी अयोध्यापुरी सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली है, धन धान्य संतानाद को बढ़ाने वाली है। श्री गुरुवर्षी जी महाराज भगवान प्रभु राम जी के मुखारविंदों से वर्णन सुन करके कहते हैं, धन्य अयोध्यापुरी धन्य है, किसी स्वयं नारायण ने अपने मुखारविंदों से प्रसन्नता की है, अयोध्या साक्षात साकेत धाम है, वैकुंठपुरी के समान है, सभी तीर्थों का मस्तक है। 7 पुरियां हैं, सबसे ऊंचा स्थान श्री अयोध्यापुरी जी का। हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, पांचों देवता, भोग लगे, सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को अपना नाम कह करके प्रणाम कर दिया।

ये सुंदर सा गीत जो सूर्य देव के अंतर्गत हम सब सुने, और उससे पहले जो आचार्य सूर्य कुंड के और अयोध्या से जो अपना संदेश को रखे थे, तो ज़रूर आप अगर अयोध्या जाए तो वहाँ पर वो कुंड का दर्शन करके, और अपने जैसे कि आचार्य जी ने कहा है कि 7 बार उस जल से अपने माथे से और टप करे। सुनने वालों, मैं आपके सेवक संजय कुछ देर तक आपके साथ और व्यतीत करने वाले हैं, पर अब कार्यक्रम का मोर कुछ और दिशा के ओर ले जाने को कोशिश करेंगे। हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

प्रति प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर से आए हैं तो उन्हें फन हार्ट वेलकम एंड अ फाइन वैकेंसी टू गवेंस। ये ऐसा देश है जहां सुंदरता जो देखने के लिए दुनिया से हर एक प्रांत से लोग यहां आते हैं। सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहां कंस एंड कल्चर के लिए लोग यहां तक आते हैं, पर यहां देखने के लिए काफी चीजें हैं, काफी जगहें हैं। और ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार और कौन कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है, हालांकि अलग अलग शहरों में, पर फिर भी रोटरडम, डेन हाग, अलमेर, आरनहेम, आम्स्टरडम, फ्लारनिंग, क्रिम्पन ऑन द एसल, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें। अगर मंदिर का दर्शन करना है, भगवान को दर्शन करना है, तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है। देखा जाए कि डेन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है, जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को, डेन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से सुतमेर में मंगलवार को 6 बजे से हल्फ नहीं खतक रात्रि का कार्यक्रम, और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे, तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बैत में है, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को।

रोटरडम में भी राम मंदिर। इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है। सुनो लो हम पहला भजन की ओर

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नीहतीन ससन सैफ अंतख में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

ये हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

कहना जहां मैं गलत हूँ वह राह दिखाओ, लेकिन जहां मैं सही हूँ वहां मेरा साथ निभाओ।

जी के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

मास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कण कण में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. श्रीमान खेमराज जी ने यह संदेश को भेजे। अन स्क्राइबर फिलोसोफ जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महामंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

कहा जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवाज दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। और अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

यही उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म निखंती फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के बाद बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरी मन की गंगा और फिल्म संगम से निखंती फिरन सेस्तक ये पिक्चराइज

बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बांधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर। रिश्ता जोड़ो फिल्म संगम से। हाँ, छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने याहू।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाए, जा कहे नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर

जी ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले हैं ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिले है, मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है।

रुको तो जरा, इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना पास पास में बैठे रहते, पास पास में सोते रहते, एक बिस्तर में सोते रहते, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना वो कभी कभी अपने से दूर करके

नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे। ये होता है तो इससे हमें बचना है, और उसके बाद बस

गाने वाले गीत आपको सुना दिए है लता जी। और फिल्म का नाम, जी हाँ, आप हमेशा पूछते हैं कौन सा फिल्म है, तो ये फिल्म का नाम है जो आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगाकर, और सुनी फिल्म का नाम असली

के हाँ नेहन तुन तुन सेस तक के बाद दो साल पुराना नेहन तीन सेस तक के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ, सिर्फ 420 में से।

तमन्ना दे और लता जी की आवाज में। जैसे आपसे बताए फिल्म 420 पे निकली फैफ तक में पिक्चर आई हुआ फिल्म। हाँ, ये गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है, इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। Let up your manner, hurry up your ways। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ, चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रोमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रोमर को सुनिए जी, अंद्रोमर कैक नार मोखलक हेदन, अंद्रोमर कैक नार मोखलक हेदन एन एरफारिंगन एन स्टर्क काउंटन फन अंद्रोमर दी सेन। से सेन क्रिएटिव फरबिल्डिंगस्क्राफ्ट हैबें से एन रिफ्लेक्टिव सेन से एन ओक नोग गेवोलिग फॉर एरफारिंगन। Allemaal een, sterke punten gaan. En de valkuilen van een dromer die zijn blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपका साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों। सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं, यादें जो है ताजा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दा चेनित हार दरखात फेख्तन, ये बात तो सही है। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दा चेनित हार दरखात फेख्तन मार टेलर खात लॉस लातन एंड लॉस लातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलेख्त यू खात अन हेले अंदर गफूलंस

टाइटल गीत आपके लिए पेश किया गया है, जो नेकतीन इन फेफ तक में पिक्चराइज किया गया है, आज में आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। मन्ना दई जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, सभी जी, यहाँ से हमको

ये सुनर सुनर गीत आपके लिए, हाँ स्पेशल आपके लिए, एल कताख मैंने लिफे मेंसे, एल कताख द्राख्त अन न्यू बखेन इन सेन अन, एन एर सेन उक न्यू कंस अन स्ट्राल्चे लिख, लात लोस वत गिस्टरन फान ये फ्रूग फनाग ब्रेंक लिफ्टे एन होप गनूग. Licht en liefde voor ons allemaal.

0: आओ बच्चों, मैं तुम्हें
1: आशा भोसले जी के आवास में लाचे दाख नित इन हत वाटर फालन रेगन geen probleem. Dat is dan gewoon extra glans op je dag.
0: Ik

सुंदर सा गीत फरमाए गया आपके लिए कि प्यार का दर्द है। इस बारे ऐसी हसीन चांदनी गीत का बोल है

गाएंगे। लता जी के आवाज में न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया आपिका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों। और क्या कहे आपसे।

गीत कहते हैं कि बाय बाय मिस गुड नाइट किशोर दास जी की आवाज में व्हाट अ वॉइस सेस टिप्स फॉर खुसुंदर हार हाँ अपना बाल कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं तो पहला है वश्यहार नित्तफाक ने वश्यहार नित्तफाक हेल्प यू होप हर्ट एंड हार व्हाट रोस्टेशन वस बर्तन एंड ओली यू हैव फॉर एट वसन हाँ फॉर एट वसन व्हाट यू हैव ओलियन खबर एक

मन घर है ये अपना, अपना घर अपना है। और निट स्टार्ट ओंस इन द वेग, निट स्टार्ट ओंस इन द वेग ओम er een mooie dag van te maken, nog regen of wind. Ja, en dan gaan we gewoon lekker door.

कभी मातम होता है, कोई बिछड़ जाता है या रिश्ता टूटता है, तो घर घर तो रहते हैं पर वो रौनक नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ऐसे ऐसा गीत याद दिलाता है, दिल तड़पाता है। Oprecht zijn is de mooiste manier om anderen te respecteren. Mogen uw dag geleid worden door rechtvaardigheid en goedheid.

हफ्त खलित जा मुझे अब याद ना आ, किशोर दा जी की आवाज में हाय मेरे दोस्तों। स्लेक्ट वेर बस्तात नीत द परफेक्ट दाग ओम आलस ग्लात ते स्ट्रेकन रुस्तिग बिगिन एंड देन कम द रेस्ट फन सेल्फ स्ट्रेक द स्ट्रेस रुइट मेने लीफे मेंसे नीत ते क्लेरन या En wij wensen jullie allemaal, waaronder ik ook, een prachtige dag vol vrolijkheid, mooie momenten en positieve energie. Maak er iets moois van uw dag.

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को भी

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादां।

हमने मूवी दौड़ हाउस से भी हमने पेश किए है ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं याद ना जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उन तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी

अभी आप सुन रहे थे अजय तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े, बुढ़ा खांसता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुरिया चुराना मेरा जिया, धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री तू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले।

फ्रॉम द मूवी स्त्री दूसरे हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विथ सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सावन में लग गई आग दिल में रहा है। स्त्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री तू से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश की है बैसलाव, पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो ऋत्वी पांडे की आवाज़ में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से सिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

और तू शायर के बाद तुम जानते हैं जोनी के आवाज आ जाते हैं और जो हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो आपको पता है सारी दुनिया के शायर हम कराएंगे और करा करे और फिर वापस ले जाए ले आएंगे रेडियो फाउन जो द बेस्ट रेडियो फन हॉलैंड इज दोस्तों। तो हम तुरंत चलते हैं समाचार की ओर। वो है सूरीनाम में भैया एक 15 बरिस की लड़की 15 बरिस के लड़का बोल रही भैया लड़की बोल रही एक नाम है आना पौला फेरेई पालवोम। हाँ सुनो नाम भैया बड़ा लंबा नाम है और बताइए आना पौला फेरा पालफोन। तो बताया गया है कि 15 साल की लड़की 13 सितंबर के और बताया गया है एक रास्ता का नाम बा रेसी फेस्ट्रांत परमारिबो में और वहाँ पर मर गया है दोस्तों मर गया है। और बतावे इस नोखनीट फास कस्तेल सिपाही बतावे है सोमवार के पहला ब्रेक पे कि एगो इसी दिन बफेस तक करीसेगा कि बकेन थेगा कि दत इस बकेन खमा दत सुवेल है स्लाख्तोफर अल्स हर फ्रीन 15 यार आउट वास 15 बरिस की लड़की रहा भैया बताई गई है आना पौला फेरेरा पालफोम। और बताए गए 10 तारीख परसों का कीवर वर्ड से अब 3 नवंबर 2003 इन ब्रासिलियान में ब्राजील में वो खबर भैया लड़कियाँ और वो बताए गए हैगा आन खडोइट में इनिटियालन आपे एन वर्ड स्प्रोकर ओवर ब्रुडलक क्यूबान से अफकोमस्ट अब पता है क्यूबान के है कि ब्राजील के है तो उकर बारे में अब सब बताई गई है फलूपक ऑंडरसुक बताई गई है कि बोले इंटीम कॉन्टैक्ट में थर फ्रेंड प्लोसिंग बनाउट वेट ओके को फ्रेंड रहा जो उसे कॉन्टैक्ट भेल बसी है और छौड़िया के गरम लगल है बहुत जोर और बोले है द यंगन ब्राख्त फॉर फोकस नार रेंट में इरको इन अन पोकिंग हार्ट अलर्ट एंड बेकुमन दार ओवरली से कोर्ट दाना तो लड़कियां अपन फ्रेंड के संग उसे के को इंटीम रहा और वहां पर गर्मी छिटकली 15 बरिस के लड़के के तो ये लड़कियां के ले गए ओकर फ्रेंड जहां एरको है और एरको वहां में जो गए लड़कियां तो लड़कियां मर गए है अखेंतन फन बिरो मिंदर किंग नान मेल देंग नार एड्रेस एंड ट्रोफन हेट मेचे सोंदर टेकन फन लीफ फन आन अन इनखस्काकल द आर्ट्स बोली छु मर गए है और बताए गए हैगा कि अने इन ओपद्राग फन सुरीनामसे ओएम लाइकवा समन बेस्लाग करी से और 15-jarige फ्रेंड हर 15-jarige फ्रेंड एसएल इज फॉर फर्दर फरहोर नार द पुलिसी ब्यूरो ओवर गफ्राग ओकर फ्रेंड भी 15 यार के रहा और ये सब बांद बड़ा दुख के बांद है हमारी जनता क्या है जोन देश के है लेकिन 15 वर्ष की लड़की का भी जो जिंदगी शुरुआत भेल है और देखो ओकर संगे क्या हुआ फैलस वाहन के ओर हम जाएला जनता जाने जो धोती उठावे तो सुरीनाम में ही हो तो फैलस वाहन है के ना देखे भैया फैलस वाहन देखो फैलस वाहन सोमवार के मानदाह के हेलेना क्रिस्टीना में भैया फैल उठावत रहा और जाए के मारिश एगो छोटा गाड़ी के और बतावे हैगा द शोफेर फन अफराख वाहन एंड द बस्टूड फन ऑटो खून सब चुटाई के भले मरल ना भाई तो फैलस वाहन में जाए छोटा ऑटो के मारिश से और बोले द फैलस वाहन दूर बोर्ड द ना द बॉसिंग द स्किटिंग रेट एट एरफ ऑफ कौन फॉर फोकस ठीक है वो नहीं तो स्टिल स्टैंड और जाए के गो घर में जाए के मारी से फैलने वाहन वो तो मार के कोई के प्रासी में घुस गए हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं। अब देखो भैया मुदर भैया माँ जो है उसको दिल बहुत भारी भैया मुदर फॉर मिस्ट मन स्मेकनो मिलर से स्पुत अख्तर कैमरा बेल्ट एट हुआ ना देखो भाई मैया रोवे है बोले 28 अगस्त के उकर अदमी सी खेलियो लोरेंजो डालन
En Derli, die nalopen, vragen de Surinamese en Guyanese autoriteiten dringen op een kojeke, kaha oker admi, or kaha oker betwa hai, vart achter de zoektocht naar hun zonen oker betwa hai, maya koje hai, in een emotionele gesprek, bole hai, roi roi bole hai, maya, bole ga safe city camera systeem Guyana, snel chahe oke kojeke kaha hai. Volgens Maya bole he, ki waren hun zonen een weekje weg. Beiden hadden nog contact met hun moeder toen zij in Nikiri waren. Ze hebben gaila Guyana betrouwen. Een van de mannen liet op zaterdagochtend via een bericht weten dat hij zijn moeder niet meer kon ophalen om boodschappen te doen. Maar omdat hij in Nikiri was, de andere moeder kreeg te horen dat haar zoon zondag terug zou komen. Omdat hij maandag moest werken. Volgens de vrouwen is het voertuig waarmee de mannen waren vertrokken inmiddels gevonden. En bij de politie is het mensen. Maar bole hega Guyana hoe ze hebben gehele ghoeme. Of bole hega Springland kisipahai bikhoje he. Je een buitenlandse minister van buitenlandse zaken. Je ziet je ambassade Guyana sub ikar waarmee koje he. Camera beelden ze van aanvraag krisen. We vragen geen geld. Benadrukt een van hen wat zij willen informatie die ze zoekt toch vooruit kan helpen. तो बड़ी दुख के बाद भैया दोनों के फोटो हुआ है और ये सब गए लहा द फ्राउन फर्टेलन दैट इधर टेलीफोन से स्पनिंग अप्रूव ऑन दैट है न्यूज़ ओवर हिम किंडर सेन कुनन ब्रिंगन एक कान नीट वर्कन एक कान नीट स्लापन नेचुरली मैया अपन बेटोन की जरूर खोजेगा तो बड़ा दुख के बात है यहां पे बताए गए है दुगो Laatst zou je doen om een roeien, ondanks alle beantwoorde vragen hadden de moeders vast een hoofd van hun zoon in terug te zien. Aan het einde van het gesprek richtten zij de rechtstreeks tot hem. Ki, ja, hier beta, apreke betaal. Maar mensen, dit zijn heel droevige. Op de kopje hier betaal je je douane en een dildo randtroller gebaat. Dildo randtroller. Vrouwen brengen spullen voor arrestant. Hash in de rand. Ja, niet doen. Kakaurim lagawal. Ja, doen. Gandhato. Oma hash. Bharke sipahi. Melege. Bhaiya. Ja, niet. Jahalia. Melege. Dindo rand. Dil. Deo do rand. Troller me. Oma ghusirara haj bhaiya atwar ke sipahi santo dorop ke vanika ke dui aurat ke 21 jaar ke van twee 21 jarige vrouwen zijn aangehouden. Hij heeft gela op een vriend ke dewe bij controle breek de rol. Het een zwart plastic zakje met vermoedelijk hash te bevatten. De ap is op een vriend gegeven hash. Ap is op apere apakadke. Sipahi ek ban kari se bhai. Ki tu jahal me del do ran legele water. Oma tu bhalle baate kaun chinani hash bhare raha. To ye baat hai hamare Suriname ki hamari janta. Ab dekho. Narcotica brigade hega jon jane drugs ke bare mein khoj ban kare badi dher ken paise mausi jerry ken paise aur jerry ken flick taikan benzima je mara bhai moses creek ego creeki hai je kanama moses creek jerry ken me flick taik ke plane ke tel paise aur tu jane drugs plane won utre na illegale Veldtoon Peter E. Tanks was ook een bare tel in de omgeving van Moses Creek District Sipaluwini mee. Bole gemengd politie-systeem Panko Jerry Kem aangetroffen die vermoedelijk waren gevuld met vliegtuigbenzine. Om bole inmiddels overgedragen narcotica brigade mee geil he. Bole de fonds volgde op informatie uit de gemeenschap dat op een locatie van gebieden meerdere Jerry Kems met vermoedelijk vliegtuigbenzine waren achtergelaten. Toen bole paan ko jari ken me bharalla vloeistof bhaiya plane ke. Op ikke baare me sab onderzoek kare. Toen jane binnenland me. Binnenland me sab een illegale vliegveld banawe he. A chota chota plane drugs lele. Aur bole utre he. Aur ohi utre he. Drugs lele.
तो फर्दर फर्स्ट प्राइज हो दोस्तों पाकी तो तुलन जाने तो पाकी तो भैया बोरो हरदम भाई बोले सरनाम इस तपलास पे बकी एनडीपी जब से कुर्सी धरी से पाकी तो के बाजा बन हो गए है। अब देखो फिर यहां अपन मुंह खोली से और पाकी तो बीर फेल बोले है बोले प्लास फ्राखते इकन बाय द वे से वार ऑफ रखेरे इन सुरिनाम ऑन द लीडिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन करप्शन आनपांग volgens hem wordt in sommige gevallen wel opgetreden, maar schiet de aanpak in andere gevallen tekort. Hij vindt dat corruptiebestrijding alleen effectief kan zijn wanneer er streng en consequent wordt gehandeld. De abtutuwaarde regering mee, ortuka he kabel in plaats dat je gaat helpen meneer Pakito en je gaat nu weer commentaar leveren waar je helemaal niks doet. Suriname eerst bolletra Pakito bhaiya, apika Pakito bolle miljarden schulden in Suriname, dollars achtergelaten bij LVV. Hoe komt het dat er miljarden zijn achtergelaten aan schulden, maar niemand nog in verhoor of het matje is geroepen? Waarom worden die mensen niet vervolgd? Waaraan ligt het? Zijn er politieke afspraken gemaakt? Zijn er situatie geweest waarbij ze niet anders kunnen? Waarom is hij zo stil? Al dus biervel, de biervel, kan je hier regeringse poetje ke op media ke ja zo nawe ke bahut bijzonder admi bhai ki u ja hai corruptie khoje ha evo brom fitter bhaiya bleek brom jaye ab bichche me ko brom fish bigad ge bhai brom fish bigad ge ek to pech hai brom fish ke to ye bichara 22 jaar ka brom fish raad ke leading 11 ame वहाँ पे ब्रॉम्फिस बिगड़ल है और ऊपर से ओकर का बोले ऊपर से जमन ओके बरूफ बिकल ले से भाई 22 यार का ब्रॉम्फिस सर और बतावे 11 तलाइनिंग 11 आमे इन सुरिनाम बरूफ फंस एंड ब्लोवर दयान ब्रॉम्फिस एक तो बिगड़ल ला ओहु चोरी हुई गए है स्लाख्तुफर हाथ ऑनदरवेग पैक करेगा एंड ड्यू दिस एंड ब्रॉम्फिस फर्दर जहाँ पे चार आदमी और दो ब्रॉम्फिस बै हम स्टॉपटन ब्रॉम्फिस्टर चार मिला हुआ पे रुकल है ओकल लगे और बोले फॉल्क द फरक्लारिंग फॉर द स्लाख्तोफर रेट है फन आउट मेंकनबर्गस्ट्रांस से कमिश्नर्स वेटे वेट जात रहा और ब्रॉम्फिस हाथ है बखीफन बोले अब ढकेले बिचारा ढकेले ढकेले जा हैं तेरे को पांद्रियन फाइव तक लगे हुआ पे दुई को ब्रॉम्फिस्टर रुकल है हुआ पे दुई को आदमी चार को आदमी उतरल है और बोले हैगा een van de bijrijders vroeg Thea of hij degene was die ruzie zou hebben gehad met een vriend van hem. Kort daarop stapte de man af en liep hij met een mes op de slachtoffer af. Vervolgens werd de bromfiets van Thea weggenomen. Het viertal vluchtte daarna op de bromfiets in de richting van commissaris Weitenweer. Surinaamse politie bolle hij. Geile bolle toe haar vriend ze jagra kalere ook een bromfiets beroef kalis. Bij jekte toet haar bromfiets raha. Bromfiets begadal laha. ओहू के लेके उस समय पेल भागल है अब सिपाही के बारे में ओंदसुक करे है हमारी जनता अब देखो भैया फिर आग लगल है अपार्टमेंट में पुलिसी अमतना स्वार खतरों में ब्रांड कॉम्प्लेक्स खरो दिल इन बुदल सिपाही रह रहेगा अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट में जबर आगे लगल है सिपाहियों चटाई गए है पुलिसी अमतनार बोले अप खरो इन बुदल सब जर गए है 13 सितंबर के बाद है रशीद पीर खान वेख में और बोलेगा स्वास्थ्य बसकाख द अपार्टमेंट ऑफ complex, bolle de brand veroorzaakt aan single schade, bolle foto van de zwart geblakerde gevel, beschadigde ramen en loshangende dakplaten, बहुत ज्यादा भैया और बताए गए ये संत दौरव की सिपाही के बारे में खोजबीर करे बला है ब्रांतवीर विश फेदर एडब्रेरी अज्ञा बुतादिश की और बड़का न होवे तो भैया कोपल आंखोदन आंखिफ्तन ओवर 4740 अमेरिकानसे डॉलर दुई मिला के सिपाही पकड़ी से को 53 यारक एसका 39 यारक ओकर फ्रेंडिन के नानी बोले आनलेडे फन आंखिफ्त ओवर गेल बद्राग फन 4740 अमेरिकान डॉलर के बारे में है द आंखिफ्त वेर खदान दो द ब्रूर फन एसका
ओकर भाई अनखिफ्त करी से गा का बोले है एकर बारे में और बोले है अन अन एटेड ऑनरसु किसनार फोरन कर कोमन कि एसका के भाई जोन है बोले एगो ख्राइस कलाकते त्योता पे अन फान से फ्रीडेन तक कोपन फॉर $3,600 बोले ओ तो बेच रहा अब कुछ लोग कर वास दाते बत्रा इन मानलक्स तेर में इन फान $150 सो वर्दन अब खोलोस द अनगेवर सो वर्वोल्गन दोर मिदल फान लिस्टिके कुंस्ग्रीपन सें बवोगन om meerdere geldbedragen om het koppel te staan. Bolle heeft verklaard dat zij volledige bedrag van 3600 had ontvangen. De kwitanties van de betaling zijn door haar ondertekend. Bolle wordt raad op Hartjoek Liberty. Nadat zij de volledige bedrag had ontvangen, zou AJ hem geweigerd zowel het voertuig als het ontvangen geld aan te geven. Af te staan. Bolle otra paisa bhardes abbe otuwa na dewe he. Bolle he verklaard dat hij zijn broer had gevraagd het voertuig van zijn vriendin te kopen. To isa bhaiya oplicht rijke baare me he. To sipahi ekar baare me ap onderzoek kariga. Ki ke sach bole he. और के झूठ बोले है हमारी जनता देखो चीना और अमेरिका को और हम जाइला बैतलान से न्यूज़ है चीना एंड फेस डून वार्स क्यों आल टॉप मानन अफ अल्स बंग मगरे चीनवा अमेरिका बोले है चीनवा के प्रेसिडेंट बोले यीपिंग और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बोले है कि दुई grote topmannen bolle hega ontwikkeling van sector te vertragen als bangmakerij. Bolle hega de topmannen achter grote westerse albedrijven stelden zaterdag dat de sector te snel groeit om de veiligheid voldoende te kunnen waarborgen. Aur hiya pe bataye gaye hai ki duigo itra badka badka aadmi bole China plays well for balance. मैं चीनी ऑथोरिटीज से लड़ रहा तो दोस्तों ये इकोनॉमी के बारे में आपको हम बता दिया है चीनवा के और अब देखो भैया फ्रांकराइक या है श्रीनाम से बातचीत करे तेल के बारे में फ्रांकराइक मांगे सामवेरक करे श्रीनाम में रोंथर खास इन फरदीपन Frankrijk wilde samenwerken. Frankrijk wilde samenwerking. Ke bare mein hamari janta. Onder meer rond de toekomstige olie- en gassector. Franske ambassadeur John Hega Denise. So marke. Geloofbrief lijke Jennifer Simon ke deze. Abole hamlo mangela samenwerker. Ke een terugkeer naar Suriname. Na bijna 15 jaar. Voor de diplomaat betekent dat de benoeming een terugkeer naar Suriname. Bijna 15 jaar gebaat met hemari janta of Franse ambassadeur bole hega mogelijk samenwerker is haar naam ze Frankrijk ze teel or gas ke bare me oker bezwaar ze zelfs de persoonlijke professionele herinneren aan mijn eerste periode in Suriname to baniya baat hai jo Frankrijk Suriname se kaam karega ee teel ke bare me hamari pyare pyare janta ab dekho tulon jano hai Suriname ke sarmakka mein कितना मछली मरला दूर क्विक मेंस जेनिफर सिमन बोले हैगा बोले जो सोना खोदे है बोले ओ सब ओमा डाड़े रहा उधर पे ब्रंसवेक गईले बोले ना बोले ओ क्विक को ना गईले वन दन बदरई फोक लोन तो बोले मछली जिए और बोले कानी कई किलोमीटर बाद मछली जाई के मरर है तो एकर मान में क्रुशियल हेड इंस्पेक्सी बैले ऑन ब्रेक इन दोशी फिश तरफ से शर्मा का दिल तुई के बारे में हैगा फ्रांकराइक में जाई के onderzoek bij hem. Oude Jennifer Simons bolle ra en Vigras Alco kreeg meneer begin 2026 bolle hega tekortkoming van Maripastone concessies te herstellen. Bolle uit het dossier dat Suriname heeft ingezien blijkt echter niet aan de aankondige herinspectie werkelijk heeft. Toen hier wat we zat dat ik januari 2026 mee binnen vastgesteld termijnen verbetering van de uitvoering gebaren mee hem. Op het we onduidelijk hij abbe door verbeter plan bijlega van de waterkwaliteit onderzoek, monitoring van de oppervlaktewater, grondwater, flora en fauna.
तो एक बारे में बड़ी लंबा चौड़ा बोले अफ्तार फन 15 किलोमीटर हीफ uitgesloten Grassal Co heeft aangevoerd dat de plaats waar de veer sterfte werd vastgezet ongeveer 15 kilometer verwijderd van de mijnbouwactiviteiten. Die afstand sluit een verband echter niet automatisch uit. Evenmin bewijst dat ze de goudwinningssysteem de bron was van de vissterfte Murukrikische leker in de Saramaka rivier te Machirijijke Suriname. Dit is mee. और मरल है तो एक बार में तुई रो अंदरसूक अब सबन शुरुआत कर दे से हमारे प्यारे प्यारे जनता हमारे प्यारे प्यारे लोग तो हम और आते जाते हैं भैया त्रिम कानिन ईरान ब्लेवन एंड ओली बहुदन सोस इन वेनेजुएला अरे भाई ईरान से और अमेरिका से इतना लड़ाई हुए त्रिम का बोले है अमेरिका Kanin Iran blijven en olie behouden zoals in Venezuela. Venezuela, Lillische, Amerika, teel behouden kreeg president Donald Trump. Mogelijkheid bole Amerika ke, ki jor afgelopen van de oorlog Iran mee bijle. Aanwezig blijven en olie behouden. Hij verwees daarbij de Amerikaanse aanpak in Venezuela. Bole in deze Venezuela, me kalli bole oise Iran ke telwa bole ham lebe. Hij zat dat VS Iran uiteindelijk zullen verlaten, maar dat Washington er ook voor zou kunnen kiezen te blijven en de olie te behouden. Keep the oil, zei Trump. Onder de mogelijkheid willen we hem door Iran te houden. Door oorlog willen we toch willen tellen hem doen. Hoe aan behouden kunnen. President trok daarbij zelf de vergelijking met Venezuela. Amerika hebben daar onlangs onvergelijke overeenkomst gesloten waarmee Amerikaanse partijen vergaande invloed krijgen op een groot deel van de Venezuelaanse olievoorraden. Tot Trump verwacht einde oorlog dit jaar. Bij ja, teel hier bij hem loke $2.45 dala hoe je Trump ke en Iran ke oorlog ze. En John hua bijle iedereen voelt in zijn portemonnee. En hamar Trump bole hai aise aise baat hai hamari janta. तो ये सब बात आपको हम बस सुना ही देते हैं कि और कैसे अब देखो भैया नब्रेख भैल है किसरी नाम में कि 50,000 SRD सब्सिडी मिलल हैगा फर्स्ट प्राइस इन श्री नाम नब्रेख ओवर सब्सिडी फॉर 50,000 SRD फर्स्ट प्राइस इन श्री नाम में को नब्रेख गेल है एकर बारे में मिनिस्ट्री फॉर फॉल्स गेसोंडहेड औ हैगा मिसिकाबा बोले बकेंद गमांग दर बरिक ओवर फरमेंदे सिप्सीडी 50,000 के फुर खसेनें एन योंगरें नीट अपवारहेद बरेस की खसेन के योंगरें के 50,000 सिप्सीडी मिले बोले जूड बात है मिनिस्टर्स प्रेक फाने को नब्रिक थेगा बोले हैगा मोमेंटेल वर्ड गस्टेल की सिरिनाम से ओवर है सिप्सीडी 50,000 SRD देगा फॉर नेशनल फंड्स फॉर खसेन एन यूथ अंडरस्टैंडिंग Daarbij wordt beweerd dat alle gezinnen en jongeren in Suriname voor financiële ondersteuning gaan krijgen. बोले ये झूठ बात है बोले सोमारे के प्रचार से बन करी से नब्रेक दर्द दर्द क्वांट वेल खन वर्ड फॉर स्प्रेड मिनिस्टर वेतन दर ऑफिशियल मेडी डीलिंग हैगा बोले इच युवा वार ना है बोले मिनिस्टर बोले फरमीन ऊपर है इस फंक्शन वार दर बोझ का पनों में ऐसा खसे ऑफिशियल कान ओवर को

देते ही रहेंगे और समाचार आप लोग को हम बताते ही रहेंगे। और हम चलते हैं जनता, हम चलते हैं और आगे को भैया गिरधारी बस्त्राइट कोरिप्सी में स्पेशल तक रक्त लकमांग गिरधारी के है भैया, एक रूम है भैया गिरधारी एक रूम है। हाँ हमारे जनता गिरधारी एक रूम है और यहाँ बतावे गिरधारी फरीन किंग फन एक रूम से एक इकोनोमिस्ट इन सुरीनाम बोले करप्शन सुरीनाम के बोले एरनस्ट के फॉर्मन आने बहुत जबर बोले एरनस्ट के बोले है का करप्शन सरनाम में वो तो जिंदगी से है बाकी और ढेर हो गया भैया। स्वामी गिरधारी लीव बे दीलन फन साम लीविंग हेड का फुल दैट करप्शन ऑन फॉलोन द सीरीज वर्थ आन gepakt beste luisteraars Girdhari bole feske in de toekomst meer aandacht zal men besteden kreeg aan Eker bare mee vooral en met het oog op de verwachting inkomen van olie en gassector ke bare mee hamare janta आप लोग को एक गीत हम सुना देते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और मुसाफिरे हो मैं यारो और चलते ही जाना है। ये गीत है जो आपको हमने सुना ही दिया है, हमारे यारो हमारी जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेकर चलते हैं। अब देखो भैया, सूरीनाम देश लेकर और पूरा पूरा दुनिया के समाचार आपको हम सुनाएंगे। जैसे आपको पता है, हर मंगलवार को शाम को 6 बजे हमारा प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं, और मंगलवार को, रविवार को शाम को, रविवार को शाम को 1 बजे हमारा प्रोग्राम चलते हैं, और शुक्रवार को 6 बजे हम लाइव भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि समाचार। सूरीनाम में बहुत गर्मी भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है बैना फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद भाई गर्म सूरीनाम में है। तो बताए गए हैगा 14 तारीख सितंबर के किस खबीर बताई से बहुत जबर पानी बरसीगा, बहुत जबर बरखा आएगा। तो मातख रेखन बैठ फालन पारी पानी जबर बरसीगा, मित्र लोग इस दिन संद्रिम के बोले बकी चाहे उतरा पानी बरसी, गर्मियाँ उछने रही फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद है। दुस मेंसे दिए सूरीनाम खान और जैन दिसे लेवल फूले बोले लुक टेम्परेचर जो सूरीनाम के दरियन दर तक खराद है, सबसे लागी मारवाही नवरात्रीन दर तक खराद हमारी जनता। और बताए गए हैगा इन नाखर रविवार को पारा में और सगरो भैया बहुत गर्मी है, इतना गर्मी कैसे लोग सहीगा, वहाँ के लोग के इतना मुसीबत है वेर के बारे में हमारी जनता, गर्म के बारे में। और बोले हैगा यहाँ से जो आदमी जाए तो कौन कौन दशा हुई वहाँ पे गर्म से भैया। तो ये बात है, सूरीनाम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ पे देखो बताई गई है कि यहाँ बताई गई है आने वाला हफ्ता में वेर ब्रेक पर हमारी बो के, और बहुत गर्मी बताई गई है। रात के सेल्फ जसन ट्विन तक खराद है, सवेरे सवेरे देर तक खराद हो जा भैया। और यहाँ बतावे संजा के दरियन देर तक रात के सीफन ट्विन तक खराद हो जा है सूरीनाम देश में। हाँ वूस दाख के इस फिरन देर तक खराद गर्म होगा, डोंडाग के 35, फ्राइडाग के 34, सैटरडाग के 33, सोंडाग के 33 ग्रेड होगा, इतना गर्मी है सूरीनाम में। तो आप लोग के थोड़ा सूरीनाम के गर्म बता दी भैया, जो आदमी गर्म लोबी करे है तो आपको तो प्रॉब्लम ना है, बाकी हमारा मान के ना भाई रात दिन कपुआ ने इस पानी में और वही महल के हम बैठल रहती भाई हमारा मान के ना रहा ये गर्म भाई कांडत नींद। अब देखो भैया और आगे हम चलते हैं, दृक्ष मिलल है भाई सूरीनाम देश में, दृक्ष मिलल है। बतावे गए गायको 5-5 तक यार के आदमी राम लखन स्त्रात में रहे, राम लखन स्त्रात क्वाटा के गोसाई स्त्रात है वही तो ठोफ जाने लाई, वहाँ पे हाश मिले है, कोकाइना मिलल है, मरवाना मिलल है। तो हम बोली तरी से बता दी लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन कोकाइने के चीज भैया उतरे हम बताई है जितना नूडक हैगा, ये बात है हमारी जनता। साथ साथ हम चलते हैं तुलन जानो है रोतनी लाइसनर के 25 तक यार के एगो नीजल अंदर है जो सूरीनाम में रहता रहा वो फरमेस्ट हो गए, कितना रोत से सपनों के खोजे है ओकर ओतो जाए के सरमक्का के रीवा में मिला गुतरों में मिला रहा आगे आगे लगल रहा। एगो नीजल अंदर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट है गा फॉर ए लास्ट वो निकेरी में रहा सरमाका में रहा ओकर पलवान नीदरलैंड में ओके बहुत खोजे हियाँ से गो हीलख रूप गैल है कुत्ता उत्ता ले के ओके खोजे भैया मक्की अब्बे के कुछ पता ना मिलल है। 15 तारीख ऑगस्टस में ओकर उज्जरो तो किया सोरेंटो सरमाका में मिलल है
Oh, diezelfde dag gaf hij zijn laatste levensteken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en ze. Oh, betaal je swampu me mila leser makkame 21 augustus ke. Oh, leisner ke se van khoje he. Verdachte ke go pakkeri se S-A-J-S-N ke R-E ke aangehouden. Ryan Kenneth Terroriaal die eerder in onderzoek was gehoord. Maar toen nog niet al verdachte werd aangemerkt is nog steeds voor vluchtig. Ja, ik mila bhagal hai tab to kuch kar le tab to bhagal baate aur hua ke PK jon hai 26 augustus ke opsporing dhardis ki aur miya saman khoje hai pakad ke choran ke tu chhod diye bhaiya tab jao tu double kaam karo aur batave hega het word verdacht van onder meer moord medeplichting van moord doodslag bhai lekar upar zware mishandeling opzettelijke vrijheid beroving en deelname aan een criminele organisatie. Politie beschouwt hem als vuurwapen en vlucht weer gevaarlijk. Doen aan hem ja bhangel he. De appu vlucht weer gega. Vuurwapen ke ba aupe te chordeluke verhoor kerke. Dat is toch erg mensen. Familie ervaart groeiende machteloosheid. Familie van Leisner woont in Nederland en zegt nauwelijks zicht te hebben op de voorgang van een onderzoek. Bole hoe ze kopen na jane ketra onderzoek hoewe he. Dat tu jane scriptie te Suriname bharale bhaiya. Zelf ego Braziliaan ke Colombiaan drugs dealer ban raha sipahi mein aur sipahi okay khol dei se sipahiyan wel ban hai so erg is dat in Suriname mensen de politie zijn zelf daar niet allemaal maar heel veel politie zijn daar heel erg corrupt mensen zijn niet te vertrouwen wij zijn ieder die ons helpt ontzettend dankbaar ook al waren bole hai aur khojai hue 10 kutta 15 aadmi gaye le 2 to 6 september hua verschillende locaties in Makkah mein khoje hai onder meer de vindplaats van een autowraak het perceel van de verdachte RE en aangrenzende terreinen waren onderzocht. Ook het wrak zelf werd met de honden onderzocht, mensen. Bolle de zoekactie leverde geen lichaam op. Politie maakte 8 september mee bekend kunnen ze die aanwijzingen waren verkregen voor verdere strafrechtelijke onderzoek. Over de aard daarvan zijn geen mededeling gedaan. Ja, wat aanwega Rodney ke abbe ek ko spoor na milal hai. Wij leggen ons neer bij zijn vermissing. Aldus Natalie Leisner ook haar familielid hai. To hier pe ego hele rei hai Rodney ke bare mein ki kab kahan konchi okar bare mein ondersoek bhail hai maar tot nu toe is geen enkele spoor mense. Aap loon jano Helen ke bhaiya school to raha aur nikar ke raha aur Helen ke sabar Marcelino Helen i hoi ge bond voorzitter sabar verkiezing mee ke jital hai Marciano Helling blijft voorzitter van de Ogham werknemersorganisatie John ABS kega wahan pakke EABS ke vakbonds leider sabar pinsese par kisi karega sein team renewable won donderdag de bondsverkiezing van team Bondru. Helling zegt dat de plannen van de korte termijn vooral gezicht zijn gericht zijn op het voortzetten van de activiteiten op het AW. Ook wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de collectieve arbeid overeenkomst van CAO. Hellingsbole he, EBSK, hoeke bondvoorzitter, opbole dat de kwestie nog achter de rechter is. EBS in de zaak veroordeeld, maar heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Europa Brunswijk. भाई जोन हैगा वो डायरेक्टर हैगा और हेलिंग से उसे भैया बड़ा गड़बड़ है और सबन्ना मांगतरा ई जीते मां वो जीत गए भाई अब जीत गए अब बॉन्ड्स फोर्सेटर हेलिंग्स जोन हैगा मार्शियानो हेलिंग्स अब कोंची कोंची डायरेक्टर के साथ करी दीन मार्कन में भैया और रसलान दीन मार्कन के गो हेलीकॉप्टर के लिख्त अन अन अन लिख्त अन कोगल से दागी से हेलीकॉप्टर में ई दीन मार्कन के जो प्रेसिडेंट है बड़ी गुस्सा में है और बोले देनी मार्कन ऑन स्टेम ओम अफस्किते लिख कोगल्स दो रूसी से स्किप दागी से एकर मारे में प्रीमियर मेटी फ्रेडेक्सन हीफ एट अफस्किते फॉर लिख कोगल दो रूसी से फ्रेगट वरओर्डेल्ड एज अ रुकलोस एक्शन द लिख कोगल्स राखतन फॉर द डीन से क्रेक्स वा मंडे आवर बेना एन मिलिटरी हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर बतावे बच गए को हेलीकॉप्टर के दाग देवर और तू जाने दे न मारकन इस नाम ले अने देसे रूसीसे एक्शन सेन बदूल ओम द इंटिमिडेरन एंड ओम ओंस द फर्डेलन स्क्राइब एंड द फ्रीडरिक्सन इन द फरक्लारिंग ओबोले हेक दैट साल नीट लुकन वॉल्कस देनन वाज द मिलिटेरे हेलीकॉप्टर बेसिक में द रूटीन ऑपरेशन ओम फोटोस टू नेमन van een Russische fregat toen de opeens groot belichte kogel de Russische schepen bevond zich in de internationale wateren in de buurt van Getser, dat is de zuidelijke plaats van Denemarken en ligt ten noorden van het Duitse Rotsok. Toen ik er waren mee in Rusland, moeten we oppassen mensen, want er ben na volkertje dag die dan wordt de oorlog allemaal nog heftiger en heftiger en heftiger. अब तो लोग जाने स्ट्रांथ हॉर्मूस में भैया तेल ओल वहाँ पे लेक भाई है ग्रीन पीस जो नहीं का एक्टिविस्ट है का फेव ओली फ्लेकर इन स्ट्रांथ फन हॉर्मूस सिख बार बोले देखा है तो एक बारे में इसे बांच ब्रुसेल वेल मिग्रांसी नोटवेर बेरखरूत तुस्त्रूम असील सुकर्स के बारे में तो जाने ब्रुसेल जो नहीं का असील सुकर्स आवे हैं यूरोपीय कमिशी बोले हैं वुंसदाग के कि होक पर स्केल मिग्रांसी जो नोटवेर में बनल है हैल्स आंतोर्ड ऑफ द अनफरवाख्त स्त्रूम असील सुकर ना स्पांस अन एक्सक्लेव En als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, melden diverse Brusselse bronnen. Duitse politica zal woensdag aangekondigd.

कुर्सी रिलान जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फरहुर बेड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहर द्वारा FAHUN.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशलो बिलेवी एंड ब्लेसिंग्स। जी साल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल हो या तो इश्तिहारे या तो फरमाई से अपमात पर, हम लोग बनाकर बंधु और जितने बार आप चाहेंगे उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag vanaf 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dofter Katarka nummer 070-65-22-47 en Studio Katarka nummer 070-362-2077. Job hier radio kakam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibedin kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur ho sake to auron ko bhi banaye. Sabhi jankari 07-365-2047 par aap samparat kare. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना हम लोगों के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं हमारे दूसरा भाग सरनामी संगीत का, और वो हमेशा की तरह कुछ इंडियन पॉप म्यूजिक होते हैं। तो कुछ पुराने जमाने के कलाकारों को मैं सेलेक्ट किया हूँ आज का इस हसीन प्रोग्राम में, और ला रहे हैं आप श्रोताओं की सेवा में सुरीनाम देश हॉलैंड देश का महान गायक और संगीतकार, नाटक लेखक, नाटक यानी तोनील अख्तर, उस्तादों का उस्ताद मैस्त्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह। हम लोगों के देश के बारे में सुनाते हैं ओम किपफेल फंत क्रेक एंड वट एंड वॉइस द ग्रेट गुरुदत्त जी। अरे बजना यार।

शाबाश जबरदस्त गायक द ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर और हमारे स्टोरी राइटर और टोनील एक्टर माएस्ट्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का जो यार एंड 50, 60, 70 में बहुत ही मशहूर था, महान गायक जिस पे हमें नाम से गर्व है, द ग्रेट सोनी इंदलाल, लाइव रिकॉर्डिंग विद इंडियन ऑर्केस्ट्रा, मेरी कहानी भूलने वाले।

जिस गायक हमारे सूरीनाम देश का अम्ट्रुट्स ऑप्टिज़ेन मैस्ट्रो सोनी इंदलाल विद द इंडियन ऑर्केस्ट्रा यारे एंड 50 60 70 एक और महान संगीतकार हमारे सूरीनाम देश का जिस पे हमें गर्व है मैस्ट्रो सुकिया का पढ़ो जवानों पढ़ो और कस के पढ़ो

सुरीनाम देश का जबरदस्त संगीतकार गायक लेखक द ग्रेट सुकिया का। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का अडियार सेस्टिक हिल्दा कान्हाई लाइव रिकॉर्डिंग विद इंडियन ऑर्केस्ट्रा।

शाबाश मशहूर गाने वाली सुरीनाम देश का एडीआर एंट 50 60 70 द ग्रेट हिल्डा कन्हाई विद द इंडियन ऑर्केस्ट्रा। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनाने वाला है जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का वायलिन राम नारायण शिवराम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर मेटली आप सुनेंगे, सोचा था प्यार और डम डम दीगा दीगा, एक ऑर्केस्ट्रा जो तैयार किया गया था ये अति सुंदर शो देने के लिए, लीड बाय मैस्ट्रो रियाज अहमद अली विथ हिज यादगार ऑर्केस्ट्रा ओपनाम 2012। मिल के सुनते हैं द ग्रेट राम नारायण शिव राम। क्या बात है।

शाबाश ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को वेलन राम नारायण शिवराम जी यादगार ऑर्केस्ट्रा सुरीनाम देश का अंडर लीडिंग फन रियाज अहमद अली जी। तो यारो वक्त हो गया है ना कुछ शेर्स हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो मेरे खून में उबल वो आज भी खानदानी है, मेरे खून में उबल वो आज भी खानदानी है यारो। दुनिया हमारे शौक की नहीं, दुनिया हमारे शौक की नहीं, हमारे तेवर की दीवानी है। क्या बात है भाइयों, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे यारो, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। तुम प्यार कर लो हम उस पे आपने, तुम प्यार कर लो हम उस पे अपने आंखों से हुकूमत कराएंगे। ये बात है। मेरे नाम पे उसकी आंखों में आंसू, मेरे नाम पे उसकी आंखों में आंसू, ना कर मजाक ऐ दोस्त, ना कर ऐ मजाक ऐ दोस्त, इस बात पे जान भी हमारी जा सकती है। दिल आने की बात है यारो अपने बस की बात कहाँ, दिल आने की बात है यारो अपने बस की बात कहाँ। प्यार अगर हो पत्थर, प्यार अगर हो पत्थर से फिर हीरे की औकात कहाँ। छोड़ो ये बात मिले जख्म कहाँ कहाँ से मुझे, छोड़ो ये बात कि मिले जख्म कहाँ कहाँ से मुझे। ऐ जिंदगी इतना बता और कितना सफर बाकी है। गुलामी तो सिर्फ तेरे इश्क की थी, गुलामी तो सिर्फ तेरे इश्क की थी, बाकी ये दिल पहले भी नवाब था और आज भी है। सभी कहते हैं कि सपने सोने के बाद देखते हैं, सभी कहते हैं कि सपने सोने के बाद देखते हैं, लेकिन मेरा सपना ऐसा है कि मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं। था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने के लिए। प्रोग्राम आगे को बढ़ाते सरनामी इंडियन पॉप सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं और लाते हैं कि महान संगीतकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडेस का मैस्ट्रो हफीज खान। रहूं कैसे मैं तुझसे निहारे बिना। आप श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि भाई हफीज भी एक जबरदस्त गायक था।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, शाबाश शाबाश। महान संगीतकार हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश का मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश को लाते हैं प्रोग्राम में और सुनाता है वो आप सभी को ये सुपरहिट सॉन्ग मुकेश जी का गाया हुआ आवारा।

गायक हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट सेंट राम बरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनाने वाले हैं आप सभी को मशहूर गाने वाली एडियार तख्त अबीदा राम जंग और जीवन राम दरस मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं, हर जन्म में तुम्हारा मिलन।

नमस्तस्यै नमो नमः। हरिओम एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरे हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोता गणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ ये यशो मिल लेकर साथियों की आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। 20 सितंबर 2020 हो गया है सोमवार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं साप्ताहिक प्रोग्राम सरनामी संगीत का और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान डॉक्टर फ्रेडक टेनिस कंतोर हुर अब द फोल्ड टेलीफोन नंबर कंतोर 0736 2 2 7 4 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0736 2 2 7 7। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए भी चैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों यानी तो फिर खेत है उनसे क्वालिटी नतीवलक फूटी से खाते लेकर दर भाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो से पहले कुछ साथियों ने प्रोग्राम चला रहे थे जिस तौर से हम लोग मिलजुल के आप सभी को खिदमत करते आ रहे हैं ये यशो उम्मीद है कि आज का पेश हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से साथियों धन्यवाद और फुल टीम की तरफ से आप सभी को भी एक शुभ शाम हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है। तो जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश है हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है मैथिल फील लजदर प्लेजीर के साथ। अगर आपके घर पे एक बेटा है या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं जो भी खुशी का दिन जो भी जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। सकता है कि आप के घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपनी फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे हिल फील सरकते मैं थी उसी दीवार से जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए चंगा हो जाए बेहतर हो जाए नित्य फरहित हैं जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर थोड़ा बहुत बातें शातें करते रहना अनहर्त बेहतर खा आप कामयाब हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। हो सकता है बंधु कि आप आजकल या परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है मोर के स्वीर अंदाक है नोई तो खीफ है वो तो खलियत है तय सब स्कूल काम पे सगरो ने फड़ गिफ प्रारा नंगा सीसा देखो मेहनत तो है दौलत
का यारी, दिन पे दिन अपने आप पर थोड़ा और जोर तोर से विश्वास सेल्फ ट्रस्ट अपने आप पर बढ़ाते रहना, और साथ ही थोड़ा और जोर तोर से कोशिश जारी भी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। तो इसी तरह कोशिश जारी रखना। नेवर गिव अप ब्रदर नंगासिसा सोशल बिलोबियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेटवर्क बदंत फॉर एट लाइस्ट्रम इसमें प्रवेश हुए तो सुस्वागतम फैन वैकेंसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको भी एक शुभ यात्रा फैन वैकेंसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहर द्वारा, फैन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। अब यू वैकेंसी एड्रेस सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फन ऑलिस ऑफ द हुक द फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन इन दैट इज नेटवर्क हमारे जनहा शेयर का दवनन द ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तो साची प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। आईडी फिल्म ललकार कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छिगा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के दौर तो बड़ी कमजोर है, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से यही कहते रहेंगे सदियों से और सदा कहते ही रहेंगे कि हैप्पी नाश्ता होते तकलीफ हम इंसान है, और अपने आप में प्यार प्रेम मोहब्बत बढ़ाते रहना यारो, यही हम लोगों का संदेश है और हमेशा रहेगा। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना और दूसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स हमारे सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक का। उसके बाद तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रोग्राम में फरमाई से भी आप सुनेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं यारो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी।

Mei filis sejalo, Amisha kita program kasuruan. साथियों आज का इस शीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फंडाख सोमदाख 20 सितंबर 2020 है ना, तो आज हम लोगों का एक जबरदस्त अनाउंसर साथी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का टीम लीडर मैस्ट्रो रॉय सुरुजबली मेयर बकेंट आल्स मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन जी का जन्मदिन है, जो वो अपने परिवार हिति प्रेमियों और साथियों के साथ मना रहे हैं घर पे। इसी खुशी के उपलक्ष में फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट लीडर सभी ओम रूपर्स मीड वर्कर्स की तरफ से भाई जॉनी नंबर वन जी को तहदिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं, लंबी उम्र के दुआएं और जबरदस्त तंदुरुस्ती के साथ, और वो भी हमारे ये भी हमारे लीफ़ लीफ़ भाई रॉय सुरजबली मीर बकंत और जॉनी नंबर वन जी के लिए कि भाई दनवा ही फीफी हुरे, तेरा आज जन्मदिन, तुझको मुबारक हो मेरे मित्र। सुनाने वाला है आप सभी को स्टारों का स्टार डकिंग ऑफ बैठक गाना मैस्ट्रो रामदेव चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में। हैप्पी हैप्पी बर्थडे ब्रो।

तुमको मुबारक हो, तेरा आज जन्मदिन है, और ये भी हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का टीम लीडर दवाने डोली मैस्त्रो जॉनी नंबर वन जी का जन्मदिन है आज। तो इसी खुशी के मौके पर फाउन हिंदुस्तानी के डायरेक्सी लीडर सभी अमरूपर्स और मीड वर्कर्स की तरफ से भाई रॉय सूरज बली मेर बकेंताल्स जॉनी नंबर वन जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत पेश कर रहे थे। आगे के प्रोग्राम में कुछ और जरूर मैं चलाऊंगा फ्रॉन्स लीफ एन या अम्बेच या बहुत तुझा ग्रापी और भाई रॉय नोग एन हेले फाइने दाग टूगेवेंस नामंस अले कोलेगास मेडवर्कर्स एन डायरेक्सीलेडर। आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ बैठक गाना का, जो साप्ताहिक प्रोग्राम है साथियों। एक जबरदस्त कलाकार हमारे हॉर्डिन देश का, जो दुनिया भर में काफी नाम कमा चुका है और दुनिया भर हिला रहा है अपने जादू भरी आवाज से, उस्ताद का उस्ताद द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को एक जबरदस्त सॉन्ग की शाम ढली।

शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे ऑल इंडीज का, द लायन ऑफ बाइट गाना, द वन एंड ओनली माएस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये की सुंदर बयान सुन रहे थे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, रविवार शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 20 मिनट गुजर चुका है, 5 बजकर। एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, जो काफी नाम कमा चुका है वर्ल्ड वाइड, जहाँ जहाँ डायस्पोरा हमारे बसा है सभी लोग सुनते हैं हम लोगों का बैठक गाना, मैस्ट्रो कृष्ण छेदी जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आ जा रही है।

जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का नौजवान कलाकार कृष्ण छेदी. ही बिलोंग्स टू अ बिग म्यूजिकल फैमिली. इसका दादा बहुत ही जबरदस्त नाटक कलाकार और एक जबरदस्त गायक भी था एडियार 60, 70, 80. पांचवी रह गया है साथियों 5:30 बजने में और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे जनहाक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और आप सुन रहे हैं जोर तोर से सरनामी संगीत. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का एक लाइव रिकॉर्डिंग आप सुनिए महेंद्र राम प्रसाद उस्ताद चैतू जी का गाया हुआ है जबरदस्त सॉन्ग उन्हीं की अंदाज में आप सुनिए महेंद्र राम प्रसाद जी को रिमेंबर द नेम.

शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का श्री महेंद्र राम प्रसाद जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सताओं ने सुन रहे थे और ये भी एक लाइव रिकॉर्डिंग था। एक मिनट गुजर चुका है 5:30 बजकर। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश का द बैंड लीडर फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी रिश्ता दीपक कन्हई जी के बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनिए ब्यूटीफुल मोरे रानी।

साथियों, 5 मिनट गुजर चुका है, 5:30 बजकर तो वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञान के विद्वानों से भी। आप कुछ सुनिए और कुछ सीखिए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आम श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहेंगे। दूसरा गौर फरमाए। अर्ज किया है साथियों महाज्ञानी श्री शॉर्स क्रिस्टोफ लिख्टनबर्ग जी ने कहा है कि इस एट नीट फरवंडरलक दैट द मेंसन सो गार्न फॉर द गॉड्सडिंस फेक्टन एंड सो ऑनगार्न फॉलगेंस द फोरस्क्रिफ्टन एरवान लीवन। De grootste voetballer aller tijden van Nederland, Sri Johan Cruijff, die kaha he. We zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan kom je hem vanzelf tegen. Grootmuzikant en schilder Herman Brood kaha he. Ik verzamel geen geld, ik verzamel mooie momenten. Ook een hele goeie. Chinees spreekwoord luidt als volgt, Satyoki: het kwade is gemakkelijk aan te leren, het goede te moeilijk.

CBD Jyotika, een telgje van de muzikale familie Bhola Singh. तो तेरा मिनट रह गया है साथियों छी बजने में प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को और एक जबरदस्त गायक फ्रॉम द बैठक सीन स्टीफन रघुनाथ जी को लाते हैं और वो सुनाते हैं एक चटनी मिक्स मेटली रात के सपना और बार बार बगिया टुगेदर कॉम्बिनेटेड

0: शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक फ्रॉम द बैठक सीन मैस्ट्रो स्टीफन रघुनाथ का ये लाइव चटनी मिक्स आप सुन रहे थे। रात के सपना और बार बार बगिया कॉम्बिनेर करके आप सभी को सुना दिया। तो साथियों 5 मिनट रह गया थी बजने में, यहीं तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम को बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ, साथियों तो पूरे छह का वक्त हो चुका है। 20 सितंबर सोमदाग आफंड 2026 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोसोलो बिलो बियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर एट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें इस तिहारे दैन कन्फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले फन मांडा तो फ्रेडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कम तोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077 पहले तेरेंस कम तोर उरे। जो भी रेडियो का काम होना दें कन्फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एक फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कराओके संग टीम ऑन द लाइनिंग फ्रॉम मैस्ट्रो चंद्रसेन गंगा एंड वे हैव पार के रालेर एंड दार ऑपगेट्रेड आंस्टांडे डोंडरडाग डेंक इक दिस फॉलोइंग वीक डोंडरडाग होपो फॉर द ट्वेल्थ के लाइव फॉर यू लिटिल सिंग ऑफ द रेडियो फ्रॉम 6 साफ़न्स तो स्टेज चुनों फॉलोइंग ऑन सोशल मीडियास एंड ओ फ्रॉम द ओमरूपर्स दां होर्टी of leest u heel binnenkort waar wij voor u live gaan optreden. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, और जो छोटा और मोटा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहा है ना, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। अतवर्त अलीमार खुशलखर अस यू एर ओक बेवेंट। आप भी जल्द से जल्द हम लोग का मेंबर बने और को भी बनाए। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर बढ़ते हैं यारो प्रोग्राम की तरफ। अब जैसे आप लोग प्रोग्राम का शुरुआत में सुन चुके हैं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का टीम लीडर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉय सूरज बली मेरबकेंत अस मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन जी का आज जन्मदिन है। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट लीडर ओम रूपर्स और सभी मीड वर्कर्स के तरफ से भाई जॉनी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां पेश है, और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं उनके लंबी उम्र के दुआएं के लिए, और साथ ही साथ बेहतरीन और जबरदस्त तंदुरुस्ती के साथ एक शुभ रात्रि आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नामंस द हेल टीम फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फेलिसिटेट और पेश करते हैं आप के लिए कि बार बार ये दिन आए मैस्ट्रो सोनू निगम जी के फैशन।

Happy birthday to you, bro. तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज रविवार 20 सितंबर को हम लोगों का टीम लीडर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का टीम लीडर वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉय सुरजबाली मेर बकेंट अस जॉनी नंबर वन जी का जन्मदिन है. तो इसी खुशी के मौके पर देन हाक्षर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट से लीडर अल उमरूपर्स और मीड वर्कर्स की तरफ से भाई रॉय को तहदील से बधाइयाँ ही बधाइयाँ खुशियाँ ही खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे. 10 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है. तो आज का इस हसीन रात्रि का ये जो दूसरा अध्याय का पहला नगमा आप सुनिए, कुछ चटकीले और कुछ भड़कते हुए सॉन्ग्स कुछ बैलेट्स भी है. तो हो जाता है ना हमारे इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक जबरदस्त गायक हॉलैंडीज का जिसे हम प्यार से मिस्टर ब्लैक के नाम से जानते हैं, उनका बिल्कुल नया चटनी मिक्स निकला है. तो मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग प्रोड्यूस बाय के आर स्टूडियो.

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मैस्ट्रो मिस्टर ब्लैक जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। 16 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6 बजकर और आप चुन है फामुन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। साप्ताहिक प्रोग्राम रविवार रात्रि का ये अति सुंदर प्रोग्राम। स्टूडियो के तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 18 और 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, तो मौसम तो बहुत ही मधुर है। तो हम लोगों का देश सूरीनाम देश को आप याद कीजिए, अति सुंदर बयान बनाया गया है और आई टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंसी जिसके बोलते हैं ना कुंस्मातक इंटेलिजेंसी आई दरिये, और ये भी कुछ सूरीनाम कड़े विश के लोगों बनाते रहते हैं। मार इस एफ मोय खमाक एंड मोय ओम ते लुइस्टर, मार आप सभी को मालूम होना चाहिए अलस इस खमाक दो द कंप्यूटर ओक द स्टेम म्यूजिक अलस दिस आई टेक्नोलॉजी। आप सुनिए माटी और पानी हमारे प्यारे सूरीनाम।

एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मैस्ट्रो रिक घेरू जी का ये सुपरहिट सॉन्ग साखन साखन आप अभी सुन रहे थे। बाकी है 6:30 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी फ्रॉम सूरीनाम, शो टाइम, शानेल नानू को लाते हैं प्रोग्राम में देखा तनु।

Beautiful song from the music formasi Showtime ganewala Chanel Nanu Dekhatanu. तो साथियों फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। कुछ नए नए सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। तो 5 मिनट यानी 6 मिनट गुजरने वाला है 6:30 बजकर। तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी भी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए।

ताजे ताजे शेर से लिखे हैं भाई भूपेंद्र जी, जो मैं कोशिश करता हूं आप सभी को सुनाने को। अर्ज किया है साथियों तेरा इंतजार, हम खुदा से तेरी मांग करते हैं, तन्हाई में सिर्फ तुझे याद करते हैं। तू आए या ना आए वो तेरी मर्जी, तू आए या ना आए वो तेरी मर्जी, पर आज भी हम तेरा इंतजार करते हैं। किसी ने मुझे पूछा कैसे हो तुम, मैंने कहा हंसते बहुत है मुस्कुराते कम है, रोते नहीं बस आंखें नम है, और सवाल सी जिंदगी है जवाब नहीं है कोई, शोर तो बहुत है पर उसकी आवाज नहीं है। इश्क क्या होता है यारो, क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या इश्क हो गया था शिद्दत से, मुझे तजुर्बा है तभी कहता हूं मौत अच्छी है मोहब्बत से।

सपना क्या होता है? जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है।

के बातें आप सुनिए साथियों, अर्ज किया है हर दिल का एक राज होता है, हर दिल का एक राज होता है, हर बात का अलग अंदाज होता है। जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पे नाज होता है। एक बात सुनो मुझे, नहीं पता मैं कब तक इस दुनिया में हूं। एक बात सुनो मुझे, नहीं पता है कि मैं कब तक इस दुनिया में हूं, लेकिन जब तक हूं मोहब्बत सिर्फ आपसे रहेगी, ये वादा है मेरा। तो ये था कुछ मोहब्बत से भरी हुई शेर से जो मैं आप सभी को सुनाया। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं साथियों। बहुत अच्छा लगता है सुनने में जो लोग बनाते हैं AI टेक्नोलॉजी से। हिर ये पे ओक नोग एंच गमाक्त इन Suriname। सारे गामा झूमे रे न्यू सूरीनामी बैठक गाना चटनी सॉन्ग।

by Maestro Sanjay Jodha from the Music Pharmacy Exclusive. नौ मिनट रह गया है साथियों, सात बजने में, तो आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक आखिरी बयान आप लोग सुनेंगे और वो सुनाने पे जा रही है आप सभी को मशहूर गाने वाली हॉलैंडीज का फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी इंडियन एक्सप्रेस लेडी संजना जी का ये ब्यूटीफुल न्यू सॉन्ग उस्ताद चैतू जी के याद में, प्रीतम प्यारे मैशअप

बधाई जा मशहूर गाने वाली हॉलैंडीज का फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी इंजन एक्सप्रेस लेडी संजना जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग।

हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यार, तो एक मिनट गुजर चुका है 7 बजकर। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सुसु लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अतुलक बदम्ड फॉर एट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देन कैन फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। फाइव से स्टे डाउन, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना उपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को होने देश भर में नहीं मिलेगा। साथियों, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेले फन मांडाग टोट फ्रेडाग टेडिस कांतोर उरे ओप दे फोलगेंडे टेलेफोननुमर्स। कांतोर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना, देन कान फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत धन ढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं आप सभी के खिदमत करने के लिए। थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में ज़रूर बातें शाते करते रहना। इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। बिंती नोखिन लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिंती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रोको भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सो ऑल्सियली ऑल्सो फाकर हैव गहोर्ट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इफ ओक्स एन एग कराओके टीम वार हेल फेल zangers en zangeressen ook meedoen met live zingen. En één keer per maand, de laatste donderdag van de maand, proberen we live karaoke vanaf 6:00 PM voor jullie te zingen op de radio. Het is heel goed ontvangen en ik denk aanstaande donderdag gaan we het weer proberen. Dus stay tuned on. Api kato awaz. Hey. Jo. आप सभी के खिदमत में हम लोग सुनाते रहते हैं ना, सिर्फ आपके लिए। 5 मिनट गुजरने वाला है 7 बजकर, तो वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज जबकि 20 सितंबर 2020 है, zondag, आज is onze teamleider van Hindustani Radio का teamleader, the one and only महान अनाउंसर साथी और हम लोगों का भाई, यारों का यार, जिगरी दोस्त, the one and only भाई रॉय सुरजवाली मेयर बकैंथल्स जॉनी नंबर वन जी का जन्मदिन है। तो इसी खुशी के मौके पर देन हार्ट चेयर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का सभी डायरेक्टर लीडर अमरूपर्स मेडवर्कर्स के तरफ से भाई रॉय जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग पेश करते हैं। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि दत्त भाई हे लंग बेउंस मग ब्लाइव एन नेचुरली उनके लंबी उम्र के लिए हम लोग मिलजुल कर दुआएं करते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन से बेहतरीन तंदुरुस्ती के साथ। ये अति सुंदर बयान नामज द हेल टीम एन हेल मोय हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गसोंग डोर मैस्ट्रो सोनू निगम जी इन सेन ओरिजिनल वर्जन।
Happy, happy birthday, Pyroy. Full team getrifse.

a happy, happy birthday to you. Ajoki 20 September 2026 het homloka team leader van Hindustani Radio ka the one and only maestro Roy Surjbali, meer bekend als Johnny Number One, jika janamdin hai isi khushi ke mauke par Den Haag Chair se directieleden, sabhi omroepers en medewerkers van Fahon Hindustani Radio ki taraf se bhai Roy ji ko teh dil se badhaiyan khushiyan hi khushiyan pyar mohabbat ke saath pesh kar rahe the. कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के सेवा में. तैयार हो जाइए एक अति सुंदर बयान को सुनने के लिए. तन्हा मेरा दिल, गौरव माली जी का बनाया हुआ ये बिल्कुल नया सॉन्ग. एंजॉय इट.

Beautiful Song, Wonderful Song, Tanha Mera Dil, Hone Laga Hai, The Great Composer Singer, Gaurav Mali Ji Ka Ye Bilkul Naya Song Hai, Geschreven Door Mehfooz Ali Aur Sangeet Vidya Hai, The Great Music Director Mehfooz Ali Ji. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्रसेन गंगा जी मन से प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। 17 मिनट गुजर चुका है साथ बजकर साथियों फ्रॉम द मूवी हेरा फेरी द्री आप सुनिए और मेरी जोहरा जबी इन न्यू यश एंड gestoken door Shahid Indian Fusion Music.

श्रोताओं सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हेरा फेरी द्री ओ मेरी सोहरा जबीन इन न्यू यश खुशतोके दोर जाहित इंडियन फ्यूजन म्यूजिक कॉर्ड मार क्राफ्ट इसमें गुजर चुका है साथियों अगला बयान अ न्यू फैंसी फन बड़ी दूर से आई है और क्रिएट डोर हॉलैंड्स म्यूजिकांत डीजे देसी एंड पावर्ड बाय लक्ष्मी नगर म्यूजिक मिल के सुनते हैं लोग क्या क्या बना लेते हैं इस जमाने में डोर कुंस्मार्ट इंटेलिजेंस या फॉर्मेंस में वर्ड दिट ओक अपन अंदर अपार्ट क्लास के प्लाट्स मात इस voor de toekomst, hè? Luister maar zelf hoe mooi het klinkt.

0: रेगे बीट पे ये ती सुंदर बयान सजाया गया है, पावर्ड बाय लक्ष्मी नगर म्यूजिक, क्रिएटेड बाय डीजे देसी, आप सभी के खिदमत में। एंड ऑल्स इज क्रिएटेड और ईआई टेक्नोलॉजी डीजे देसी के जरिए। दिस इज टुकम्स म्यूजिक यंग्स। बयान की तरफ बढ़ते हैं, 3 मिनट रह गया है 7:30 बजने में साथियों, और एक अति सुंदर बयान इस जमाने के मशहूर गाने वाला जुबीन नौटियाल के ब्यूटीफुल आवाज में, बिल्कुल नया सॉन्ग है उसका, खस्क्रीफ डोर महान लेखक मनोज मुंतशिर और महान संगीतकार आकाश रिजा, इस जमाने के रिजिया जो जबरदस्त संगीतकार है, उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उसी का बनाया हुआ ये मीठा धुन कुछ अल्फाजे के साथ डायलॉग्स शुरुआत में सुनिए और एंजॉय कीजिए। शाम आन बसो
1: तू अभी तक तैयार नहीं हुई, अरे मेहमान आने वाले हैं। किशोरी माँ किशोरी, उसके बिना तो मेरा कुछ होता ही नहीं है।
2: तुम दोनों ना अपने रूम में होगी, मैं अभी रखती हूँ।
1: माँ एक थॉट आया है दिमाग में, रुक तू ना निकल जाएगा।
2: मेहमान निकल जाए, इससे अच्छा है कि तेरे थॉट निकल जाए, तेरी किताब की आज ही छप जाएगी।

0: अरे देख क्या रहे हो, मदद करो।
1: कितना अच्छा लिखती हो, किताब क्यों नहीं छपाती?
0: अच्छा अलग कौन छापेगा मेरी किताब?
1: मैं, मोहन माथुर, फ्रॉम बुक्स एंड बियॉन्ड।

आज के मेरे हिस्से के कारी ग्रम में तुझरा गौर फरमाए कुछ आखिरी शेर से। ना जिक्र कर ना फिकर कर, ना जिक्र कर और ना फिकर कर, अपनी जज्बातों का तू बस कदर कर, जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी का बस तू सबर कर। कोई दोस्ती कभी पुराना नहीं होता, कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता, दोस्ती में दूरी होती रहती है, दोस्ती में तो दूरी रहती है पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता।

जलाने की जरूरत क्या थी, मुझे यूं तड़पाने की जरूरत क्या थी, और प्यार नहीं था तो साफ साफ कह देता, अपनी औकात दिखाने की जरूरत

मेरी भी कोई कहानी है, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कोई कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूं ना, ये जो बदला बदला सा लगता हूं ना, ये सब अपनों की मेहरबानी है। तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहां से लाऊं। मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, मैं तो मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहां से लाऊं।

आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कारीगरम में, यारो तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। आगे का कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ साथियों, और वक्त भी धीरे धीरे करीब आने लगा, लेकिन उससे पहले द क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वन एंड ओनली श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए, खुशक्रीफ एंड कॉम्पोनेडोर केशो थियो हार।

श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में कल्याणी, और देखा जाए तो इस जमाने का द ग्रेट कंपोजर केशव त्योहार का कंपोज किया हुआ अति सुंदर बयान शरीफ दौर सुहास मोहिदीन। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। वारा के मुताबिक मैं चला रहा हूँ फ्रॉम द मूवी कॉकटेल ट्वे। अगला बयान बिल्कुल नया सॉन्ग द ग्रेट मैस्ट्रो अरिजीत सिंह जी का तुझको। म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय द ग्रेट ग्रेट द वन एंड ओनली प्रीतम चक्रवर्ती जी, और अल्फाजे है अमिताभ भट्टाचार्य जी का।

त्वी आप सुन रहे थे महान गायक इस जमाने का द ग्रेट अरिजीत सिंह और साथ उनका दे रहा था द ग्रेट सुंच सुनिधि चौहान म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय मास्टरो प्रीतम चक्रवर्ती एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय अमिताभ भट्टाचार्य जी। बाकी है साथियों 8 बजने में, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आया आप सुनेंगे एक आखिरी सॉन्ग और सुनाने वाले हैं आप सभी को दो महान गाने वालियां इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द त्वे पिलार कहें से फीमेल सिंगर्स का श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान टुगेदर विद सलीम सुलेमान का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग छलिया। क्या बात है, रिक्टिंग 20 मिलियन व्यूज खाती और ओकन कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइड संग्रेस। ये दोनों तो इस जमाने का सबसे de meest gevraagde artiest female uit de Bollywood film industry nog steeds hoor. The Queen of Melody en de Queen of the Rock and Roll Music from the Bollywood film industry. Shreya Ghoshal aur Sunidhi Chauhan ko aap sunye ye song mein. In dono ka jabardast talent aap sunenge to मिलके सुनते हैं द ब्रदर्स एस यानी द एस ब्रदर्स सलीम सुलेमान का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

Beautiful song eh chaila do mahan gaane wale ya hamare Bollywood film industry ka is zamane ka do music ka queen kan zeggen, eentje in de rock and roll and eentje is all round the queen of melodies from the Bollywood industry Shreya Ghoshal aur Sunidhi Chauhan ke aawazon mein ye teen drabiyan aap sun rahe the gecomponeerd door de S Brothers Salim aur Suleiman Merchant do bhaiyon ne is gaane ko banaya hai साथियों यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम दुष्मात होने का आया ये आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार 6:30 हाँ इस इर्द खाए बखेने मैं आप सभी से मिलने वाला हूँ शोक समाचार लेकर फन फैमिली मनोहर एंड फैमिली रघुनाथ तो ज़रूर आप सभी को मैं इतला दूँ कि मुस्ताक बखेने के बाद इर्द इन फरमान में शोक समाचार प्रोग्राम फन फैमिली रघुनाथ एंड फैमिली मनोहर मेरे बाद आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्र सेन गंगा जी तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ दादा हेमंत कुमार के याद में वैसे तो ये गाना एक डुएट है लेकिन मैं आज अकेले ही सुना देता हूँ आप सभी को

पद्माशरीन रफी जी की आवाज में कुछ दर्द भरे गीत आपके लिए पेश हो रहा है।

हाँ बता दो मेरे हुजूर कि आपके नाम क्या है, और इस बार लेकर चलते हैं ये वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। देर आई दुरुस्त आई, थोड़ी देर हो गया क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम था। बहरहाल सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faun.fm पर, दप रेडियो और इंटरनेट रेडियो, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो 10 मिनट व्यतीत हो चला है 8:03 ऊपर आख्त। ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से। जो भी मारे लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया सुरेन भगवान दीन के जरिए। भैया सुरेन भगवान दीन आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बस्तियों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एक शुभ रात्रि भैया सुरेन। गीत गजल के कार्यक्रम लेकर हम आज उपस्थित हैं, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ फरमाइशें हैं और वो फरमाइश हम आपको सुनाने वाले हैं। हमारा अनाउंसर साथी श्रीमान जॉनी नंबर वन का, जिसका नाम है रॉय सूरजवली का फरमाइश है, अभी हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे और कुछ गाने के बाद तो फिर गीत गजल के कार्यक्रम हम शुरू करेंगे।

तो चलिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ये कार्यक्रम, फरमाइश कार्यक्रम श्रीमान सूरज बली का। देखा जाए आज सोनदाह 20 तारीख सितंबर है, तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सूरज बली, जो हमारे कार्यकर्ताओं का में से है, फौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यकर्ताओं में से एक है, उम्र पर है, गायक है, बस कहते जाइए कौन वो क्या वो नहीं करता होगा। बहरहाल फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बस्तूर की तरफ से, सब सहयोगी की तरफ से, श्रीमान जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सूरज बली को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है। चलिए देखते हैं दनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरज बली की आज, जबकि सोनदाह 20 तारीख सितंबर है, उनका जन्मदिवस है, तो हार्दिक बधाई शुभकामना पेश करते हुए फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और चलिए अपने आप के लिए वो एक गीत मांग रहा है, और फौन हिंदुस्तानी रेडियो सभी श्रोताओं की तरफ से और रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रीमान जॉनी को भी बधाई देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामना पेश करते हुए, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ, नम्रता के साथ, लाड प्यार के साथ और दिल की गहराइयों से, चलिए अपने आप के लिए वो ये गीत मांग रहे हैं।

मुझे तो शिव शंकर मिल गए हैं। आज सोमवार 20 सितंबर है, तो जाहिर है कि दनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जो एक सदस्य है जिसका नाम है रॉय सुरजबली, आज उनका जन्मदिवस है। तो अपने आप के लिए ये गीत मांग रहा था शुभकामना के साथ, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए कि इनकी दीर्घ आयु है, लंबी आयु की प्रार्थना है। और जहाँ तक देखा जाए तो परमात्मा से यही प्राप्ति चाहता है कि उनके सुख प्राप्ति हो, शांति प्राप्त हो, और जो काम वो करें, जो काम में हाथ बताए उन्हें सफलता मिले। भैया जॉनी, आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, और वो है दनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सुरजबली की। आज 20 सितंबर है, तो दनहा के रहने वाली उनकी प्यारी धर्मपत्नी मराय के सुरजबली अपने प्यारा पति को हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ आशीर्वाद के साथ। चलो ये गीत उन्होंने मांगे हैं इस तरह से, प्यारी प्यारी धर्मपत्नी अपने पतिदेव के लिए।

तुम्ही मेरी मंजिल तुम्ही मेरी देवता। ये शानदार गीत पेश हुआ आफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आज सोनदक 20 सितंबर है तो दनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सूरजबरी जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का उम्र पर है, हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया उनकी प्यारी धर्मपत्नी के जरिए। प्यारी धर्मपत्नी मरेक सूरज बली आज अपने पति देव को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है, देखते हैं, आज सोनदक 20 सितंबर है तो श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरज बली का आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके बेटी स्पेकर नेसे से बड़ी बेटी श्यामा सूरज बली सुखराम और दामाद सतीश सुखराम अपने ससुर को, यानी श्यामा सूरज बली सुखराम अपने पिता को और सतीश सुखराम अपने ससुर को और दो नाती अरुष और अंश सुखराम अपने नाना को और साथ ही साथ सूत्रमेर के रहने वाली बेटी शांति सूरज बली सुखा अपने पिता को, दामाद अश्विन सुखा अपने ससुर को और नाती शिवंश अपने नाना को और साथ ही साथ रोतरदाम के रहने वाले बेटी संतुषा सूरज बली अपने पिता को हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ दिल की गहराइयों से पेश करवा रहे हैं ये गीत मिलकर पिता के लिए ससुर के लिए और नाना के लिए। बस नाना समझ जाइए और बैठ जाइए और सुनिए।

नाना हो गया दीवाना, हुआ क्या बात है नाना जी। आपके लिए ये गीत था, जबकि आज सोनदाग से 20 सितंबर के आपका जन्मदिन है। श्रीमान जॉनी नंबर वन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यकर्ताओं में से है और श्रीमान रॉय सूरजमली की जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर स्पेकन से बड़ी बेटी श्यामा सूरजमली सुखराम अपने पिता के लिए, दामाद सतीश सुखराम अपने ससुर के लिए, दो नाती अरुष और अंश सुखराम अपने नाना के लिए, और साथ ही साथ सूत्रमेर के रहने वाली बेटी शांति सूरजमली सुखा अपने पिता के लिए, दामाद अश्विन सुखा अपने ससुर के लिए और नाती शिवंश अपने नाना के लिए, और आगे चल करके रोतरदाम के रहने वाले बेटी संतुषा सूरजमली अपने पिता के लिए जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जो आज 20 सितंबर के हुए हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं दना के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरजमली का। आज 20 सितंबर है तो जन्मदिवस है। प्यारी प्यारी धर्मपत्नी, जी हाँ प्यारी प्यारी धर्मपत्नी मराई के सूरजमली अपने प्यारा पति को हार्दिक बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ ये गीत मांग रही है इस तरह से।

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, और देखते हैं आज सौंदक तो इंदक सितंबर है, तो दिन आखिर रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सूरज बली फान हिंदुस्तानी रेडियो का करता दर्दा जो है, आज उनका जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर दिनाक से प्यारा धर्मपत्नी, प्यारी धर्मपत्नी, जी हाँ प्यारी धर्मपत्नी मराई का सूरज बली अपने प्यारा पति को हार्दिक बधाई, शुभकामना और आशीर्वाद के साथ ये गीत पेश किए। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले, ये भी एक धमाकेदार नंबर है, बस समझ जाइए, सुन लिए, इत्मीनान से बैठिए। दिनहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन आज सौंदक तीन तक सितंबर के इनका जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर ज्योति भजन कीर्तन समाज से सभी सदस्य यानी लीडर श्रीमान रॉय देवराज, संता खेमय जी, संजय भगवंत पंडित जी और मराइक सूरजवरी प्यारी धर्मपत्नी भैया जॉनी नंबर वन को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए चलो ये धमाकेदार गीत है।

मुबारक सालगिरह, वाह क्या बात है। ये बैठक गाना पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आज सोन दफ्तुविन तो सितंबर है, दिन आके रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरजमली के आज जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर देखते हैं ज्योति भजन कीर्तन समाज के सभी सदस्य, जैसे कि रॉय देवराज, शांता खेमई, संजय भगवंत और मराई का सूरजमली, अपने गायक, अपने हारमोनियम मास्टर, अपना लीडर श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरजमली को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। चलिए एक फरमाइश और बचा है और वो है उनकी प्यारी धर्मपत्नी, दरहा के रहने वाला श्रीमान जॉनी नंबर वन रॉय सूरजमली की आज 16 अक्टूबर है जन्मदिवस है। प्यारी धर्मपत्नी हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं। जी हाँ, प्यारी धर्मपत्नी मराई के सूरज बली हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ पेश कर रही है शानदार गीत

ये प्यारा गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फरमाइश कार्यक्रम में। जबकि आज सोनदख 20 सितंबर है, तो दनहा के रहने वाला जॉनी नंबर वन श्रीमान रॉय सूरजमली का आज जन्मदिवस है, जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का करता धरता भी है। तो देखते हैं दनहाक से उनकी प्यारी धर्मपत्नी, श्रीमती मराई का सूरजमली अपने प्यारा पति को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रही थी इस तरह से। भैया जॉनी जी और सभी बच्चे और मलाइका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फरमाइश देने के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। फरमाइशी कार्यक्रम हमने पेश किए है। चलिए एक गीत पेश करते हैं, उसके बाद हम पेश करें विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और रिक्लामे के बाद फिर वापस आ रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम लेकर नहीं लेकिन गीत गजल के कार्यक्रम। तो जो लोग ने ऐप किए हैं, तार किए थे, अभी क्षमा करना, रिक्लामे के बाद आप तार कर सकते हैं। नौ सही तक दिन फाइव सस्त तक तुम तुम तक सही फेयर तक नौ सही तक दिन तुम सस्त तक तुम तक सही सही तक। और एक दो गीत के बाद फरमाइश कार्यक्रम तो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, तो गीत गज़ल के कार्यक्रम हम रिक्लामे के बाद पेश करेंगे।

आशा जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये रंगीन महफिल उफ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। आप तार कर सकते हैं क्योंकि गीत की गीत गज़ल के कार्यक्रम हम शुरू कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तार किए थे या ऐप किए थे आप तार कर सकते हैं। दोनों तार फ्री हैं, नो सही फिन तक दरी पैपिन सस्त तक तुन तुन तक सही फिन फिर तक, या तो नो सही फिन तक दरी तुन सस्त तक तुन तक सही फिन सही फिन तक।

जब याद आए, बहुत याद आए, रफ़ी साहब का ये द्वैत हम आपको सुनाए, इस तरह से पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जब तक कि आप कोशिश कर रहे हैं तार करने के, लेकिन तार तो फ्री है, दोनों तार इस वक्त फ्री है, नो से इवन तक दरी फाइव एंड सेवन तक टू इन टू एन से इवन फेयर तक, या तो नो से इवन तक दरी टू एन सेवन तक टू इन तक से इवन से इवन तक, तो आप तार कर सकते हैं जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

के कार्यक्रम में ये गीत हम चला रहे हैं उनके लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। उर्शिला जी सुनिए, इस तरह से आपकी मांगी हुई गीत हम चला रहे हैं। उर्शिला जी ले।

जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। निकिती एन शस्त्र का ये फिल्म है, फिल्म घराना में से निकाल कर हम आपको सुनाए आशा जी और रवि साहब की ये द्वैत। ये द्वैत चलाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि रोतरदाम के रहने वाली उर्शीला जी, ये गीत को मांगे हैं। उर्शीला जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हमने पेश की। उर्शीला जी, रोतरदाम के रहने वाली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, वो बेया बेया

गजराज जी दराह के रहने वाली हैं। तो भैया गजराज जी, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों को हमें मिल गया है, तो हम अभी चलाएंगे। ये गीत विशेष करके पेश किया जा रहा है भैया गजराज जी के लिए, दराह के रहने वाले भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फिर वापस तार की। एक शुभकामना शुभरात्रि आपको पेश करते हुए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, जिस गीत के जिक्र आपने की, सब कुछ मिला मगर ना दिल को इत्मीनान मिला। चलो सुनते हैं।

0: सब कुछ मिला मगर इत्मीनान नहीं मिली, यानी रुस नहीं मिला भैया जी। और ये गीत चलाया गया गीत गजल के कार्यक्रम में फॉर हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आपने मांगे हैं, शुभकामना के साथ हम लोगों ने पेश किए। भैया जी उम्मीद है आपको ये गीत ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इन मोमेंट आई बिलीव, हाँ, और ये गीत हम लोगों ने पेश की। चलिए देखते हैं लाइन को, दो लोग हैं, एक मिनट। फॉन हिंदुस्तानी रेडियो खुदन आफंत,
1: खुदन आफंत बेया,
0: खुदन आफंत बेया, हु इज इट मत बेया,
1: या खात वेल और
0: अच्छा तू तब बहुत दूर आ गई ले ना, तब दूर आ गई ले तू अब
1: देख, या अच्छा सबसे प्रोबेरी करे ना लो का होता,
0: हां ओके,
1: या
0: बेया इन मोमेंट और बेया यूट्रेख्ट, बेया यूट्रेख्ट बताओ और कैसे रहले फॉर द रेस्ट बेया,
1: बोले जो हरिया से खाइस वही हरिया छेद कर दे,
0: बड़ा दिन पसंद ली
1: बोले वक्ती पहले मैं आज ही लोग दूसरा रकम ला बोले
0: एगो थरिया बोलत रहले थरिया भी,
1: हां मत थरिया मैं हरिया भी बोलता, मैं एगो प्लेटी के नाम भी बोलता, आज प्लेटिया दूसरा रकम बोलता वक्ती हम लिख लबे फौज का देख के प्लेटी में भी बोले जो प्लेटी खाइस प्लेट में खाइस उही में छेद कर दी,
0: थरिया में बोले प्लेटी में बोलत रहे,
1: या मार अतिस्वार
0: या इंद्रजात
1: हिंदुस्तानी अगो जानीला अगो आदमी अगो के घरे जाता खूब खलेर दे आदमी रा बैठे खावा पिया बेचारा सब चीज ओकर जान गए बस गए ब्लास्टिंग बीच दौर खीफा कर दी,
0: ले कर लो बात गैल भैंस पानी में,
1: और मेरा रो कितना गढ़ा रहा कुछ सिवना में तनि बाव करे रहा सब सब दौर खीफा कर दी,
0: नौ दर्जन बीच में रख
1: तब छेद ना कर दी,
0: या
1: तो खेल खमीन है
0: तो सही कर
1: ये
0: अच्छा बिया, तो बताओ कौन गाना मांगत रहे ले तू,
1: तो वो गाना कौन धर दिया,
0: अरे बाप रे बाप
1: आज ना उकर ली,
0: अच्छा ठीक है हम धर दिल हमारे सामने अच्छा। एक तूफान धर ली है एक बहुत अच्छे दो एक फैन या
1: हां हां
0: इसको ना ओके प्रिया थैंक यू वेल,
1: हां
0: या एंड हेल फिर लॉइस प्लेसिर, और अबे हम फिर हर हाल कर देबे फंदा इज द लास्ट आउट सेंडिंग फॉर मी एक कॉम 29 अक्टूबर वेयर दैट इज ऑन डोंडरडाग बिगिन ik
1: या
0: इसको प्रिया थैंक यू वेल
1: अक्टूबर को मैं तो
0: हां
1: ओके
0: इन द आउट सेंडिंग ik kom eerder maar ja nee, je vakantie zei je, dan weet je niet wat jou te wachten staat. Kom je ka, ja, samenleven. Je hebt nou tien bakul die je zijn soja hoe jij kreeg, weet hoe het gaat.
1: Precies toch? Dan ben je daar hij aan weet toch? Ja, ja, hij een heel week heb je nodig.
0: Nou, na die na maar goed. Ben je dan
1: keer? Waar kun je daar leuwe laat zo jij?
0: Hoi toch? Veel plezier en tot horens, ja?
1: Ja, ja, is goed. Oké, acha.
0: ये थी बेया जी उतरा के रहने वाले हैप्पी मंथ ऑन द शो ऑन द लाइन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफन जाने हैं जो निकाल दिया क्लॉप्ट इंद्रजात या आसिकना तो क्लॉप कैक वाला मुफरम मेला बताओ कैसे भैया मंसूर मोई
1: या खुद और अल सब खुद प्रिमा है मैं तू
0: क्या ले धीरे धीरे के गुजा है
1: मोई
0: मुफरम मेला बताओ कौन गाना से हम लोग खुशी कर सकते
1: हैं फिल्म मीम साहब
0: हाँ
1: दिल दिल से मिलाकर देखो
0: दिल दिल से मिला कर देखो इस खुद दान मुफरम मिला थैंक यू वेल दैट यू हैव कॉल्ड आई विश यू एन हेल गुड आफ्टर एंड हेल फील लाइस प्लेसिर एंड टॉट होरंस वेयर या
1: वांट टू कम एट फकासी
0: द जानवी को निग्रेट विंड ऑफ अक्टूबर डोंडर दैट इज इट द मैनिक वेयर इन द राइट सेंडिंग
1: ओह ओके
0: from Mila, thank you. Well,
1: yeah.
0: And Khurtan Bhaiya Mansoor.
1: And
0: Ohor. Yeah.
1: Okay. And
0: Moe
1: for Kansi.
0: Thank you well. Thank you well from Mila. Da. ये थी मीला जी सुतरमेर के रहने वाली। तो लीजिए बेया जी के लिए हम ये गीत रखे हैं और ये बेया है उतरख वाला, उतरख के रहने वाली बेया जी के लिए, बेया जी उतरख के रहने वाली शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम आपको सुनाने वाले हैं इस तरह से। बेया जी उतरख के

दिल से दिल की डोर बांधे मुकेश जी और लता जी आपको सुनाए और ये गीत चला इतरा के रहने वाले बिया जी के लिए। बिया जी उम्मीद गीत आपको पसंद आया होगा, शुभकामना के साथ हम लोगों ने पेश की। चलिए आखिरी गीत पेश करने वाले हैं और वो है मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी के लिए ये शानदार गीत हम चला रहे हैं इस तरह से, शुभकामना के साथ मीला जी और भैया मंसूर के लिए।

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। अनहित सुपर सॉन्ग फन ही खती नहीं खंते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दीदे।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई निखंतक का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं। देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है, दिल में कुछ मजलता है।

तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई घंटी नई घंटे का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर निखंतक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट तक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मोफिक नाम है कोबरा गिल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ रिश्तों को मुलाकातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस याद आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वपन विज्ञान।

सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी।

आज हम विचार करेंगे शकुन विचार, और आज हम करेंगे कुत्ते के ऊपर शकुन विचार। कुत्ता गमन समय जोशवन, फर फर दे कान, तुरंत यात्रा टाल दो, अशुभ शकुन पहचान। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गमन यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से फरफर करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो अपनी यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। शकुन यात्रा में कुत्ते को शकुन रतन कहा जाता है। देवराज इंद्र शर्मा के कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए और गिद्ध को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू रिश्वत के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हो गया था, इसलिए इस विश्वासघात का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम भविष्य में मृत प्राणियों का भक्षण करोगे और प्राणियों को तुम्हारा दर्शन अशुभ फलदायक होगा। इसके साथ ही शर्मा को वरदान दिया कि तुम कर्तव्य निष्ठा के कारण समस्त गृहस्थी प्राणियों में सम्मान प्राप्त करोगी।

विद्वानों का मत है कि प्रेतग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है। श्वेत वर्ग वाला कुत्ता विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, पीत वर्ण वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहलाता है। यदि गमन कर्ता के सम्मुख श्वान सुनने वालों, जैसे हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता आगे से आ गए तो क्या होता है? दाहिने पैर से दाहिना अंग खो जाता है तो उत्तम फल मिलता है। बाएं पैर से दाहिना अंग खो जाए या बाएं पैर से बाएं अंग खो जाए, अशुभ फल मिले। जमाई ले, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, निर्धबी होकर जमीन पर लेट जाए, यात्रा कार्य में विघ्न असफल। जिन वृक्षों पर अंकुर फूल लगे हों, जिनमें दूध निकलता हो, गंदे पानी से भरा मटका, गोबर, खेत, ईंट, मंदिर अन्न के समूह, भंडार, अन्य शोभायुक्त स्थान या वस्तु पर कुत्ता मूत्र त्याग करता दिखे, अनेक प्रकार के लाभ।

सुनने वालों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुत्ता अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखाई दे, अगर वो अपना दाहिने पैर से दाहिना अंग को खुजलाता है तो हमें उत्तम फल प्राप्त मिलता है, और अगर बाएं पैर से दाहिना अंग खुज जाए तो उससे हमें अशुभ फल मिलते हैं। सुनने वालों, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, वो जमाई लेता है यानी उबासी आती है उसको, मल मूत्र का त्याग करता है तो यात्रा कार्य में विघ्न आने वाले हैं, तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। सुनने वालों, और जिन वृक्षों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, दूध निकलता है और पानी से भरा मटका या गोबर या खेत कुछ भी दिखाई दे और वहाँ पर कुत्ता यानी मूत्र त्याग करे तो वो उससे लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों,

आसन, छत्र, छाया, ब्ली या धूल के ढेर पर मूत्र त्याग करे तो धन की प्राप्ति होती है सुनने वालों। ओखली, मूसल, कांजी से भरे पात्र, सूप पर अपने दाहिने अंग को उठाकर मूत्र त्याग करे तो बहुत सा धन प्राप्त होता है सुनने वालों। मुख में रोटी, पूड़ी, मिठाई, फल, मांस आदि दिखे सदा ही धन का लाभ होता है सुनने वालों। ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर से अपने मस्तक को खुजाता है तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है सुनने वालों।

सुनने वाले, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताईं, अगर ये सब कार्य कुत्ता करता दिखाई दे तो उन सब कार्यों में धन प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दूध अथवा जल के पात्र को देखकर आंख मीच ले, बाद में उसी स्थान पर सो जाए, वस्त्र भूषण का लाभ। सोता हुआ गर्दन ऊंची करके देखें, अर्थ हानि असफलता। कीचड़ से सना हुआ मुख में पत्थर अथवा हड्डी लेकर आ जाए, यात्रा में चोरी का भय। मुख में हड्डी लेकर भौंके, मृत्यु समकष्ट। समुख आया कुत्ते की पूंछ कटी, कान कटे। रोगी दुर्बल हो, चिंता हो, भयतुर हो, असफलता की प्राप्ति। जल से बाहर निकलकर अंग हल्लाता हुआ, चोरी का भय।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि दूध अथवा जल के पात्र को देखकर कुत्ता अपनी आंखें बंद कर ले और बाद में उसी स्थान पर सो जाए तो वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता है। सुनने वालों, अगर सोता हुआ कुत्ता गर्दन ऊंची करके देखे तो उसमें असफलता मिलती है। सुनने वालों, अगर कुत्ता कीचड़ से सना हुआ है और मुख में पत्थर अथवा हड्डी को लेकर आए तो यात्रा में चोरी का भय होता है। सुनने वालों, मुख में हड्डी लेकर भौंके तो उस समय असफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों, जल से बाहर निकलकर अंग हिलाता है तो चोरी का भय होता है। सुनने वालों,

घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता बार बार भौंके तो राज्य दंड का भय तथा चोरी का भय। घर में घुसकर खंभे को आलिंगन करे अथवा चूल्हे पर चढ़ जाए तो प्रियजन से समागम। पिछले पैर को अगले से खुजाए सभी कार्यों में सफलता। बहुत देर तक आकाश गोबर मांस विष्ठा को देखता रहे तो सुंदर स्त्री धन का लाभ। अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा किसी प्रियजन का मरण हो। रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले औरतों का गर्भपात बलात्कार की दुर्घटना अग्नि कुंड से जन धन हानि।

सुनने वालों, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें हमें राज्य दंड कि हमें किसी चीज़ के चोरी का भय भी होता है, कोई हमारा चोरी कर लेगा या फिर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। और घर में घुस कर अगर खम्भे को पकड़े या चूल्हे पर चढ़ जाए तो हमारे प्रियजन से मिलन होता है। पिछले पैर को अगले से खुल जाए तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बहुत देर तक आकाश, गोबर या मास्ट को देखता रहे तो सुंदर स्त्री का लाभ होता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा मिलती है और किसी प्रियजन का मरण का समाचार सुनाई देता है। अगर रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले तो औरतों का गर्भपात, बलात्कार की दुर्घटना और अग्निकुंड में जल हानि ये सब प्राप्त होते हैं। सुनने वालों,

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रातः अग्निकोण में सूर्य को देखकर भौंके, अग्नि या चोरी का भय। दिन के मध्य में भौंके, मृत्यु का भय। सायंकाल में भौंके, लड़ाई झगड़े में रक्तपात। सायंकाल में सूर्य की तरफ मुख करके रोए, महान दुख। किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे, निश्चित रूप से चोरी। घर के द्वार पर सिर रखकर स्त्री को देखे और कू कू करे, स्त्री को रोग। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि जब सूर्य की किरणें सुबह धरती पर पड़ती हैं और कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो अग्नि या चोरी का भय होता है, यानी आग लगने का खतरा या फिर चोरी का डर लगता है सुनने वालों। और दिन के मध्य में भौंके तो मृत्यु का भय, और साया का शाम को भौंके तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा यानी ऐसे सुनने को मिलता है। और शाम रात को भौंके और फिर महान दुख। और किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी का भय, चोरी का डर है। और घर के द्वार पर सिर रखकर किसी स्त्री को देखे और कुकू की आवाज़ करे तो इससे स्त्री को किसी भी रोग का खतरा रहता है सुनने वालों।

घर के भीतर धे करके मुख बाहर निकाल कर किसी स्त्री को देखे और ऊंचा स्वर करे, स्त्री के व्यभिचरणी का संकेत। मांस हड्डी भोज्य को राख के ढेर में छुपाए, अग्नि भय परवासी के पीछे आकर रोए, मृत्यु भय की संभावना। परवासी को कुकू करता हुआ बार बार आलिंगन करे तथा उसकी प्रदक्षिणा करे, अवश्य ही कारागार में जाना पड़ता है। गोबर से लिपे चौक में आकर बोले, अति संपदा प्राप्त। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी के घर की स्त्री को देखकर ऊंचे स्वर में बोले तो स्त्री के व्यभिचरण का संकेत मिलता है। अगर मांस हड्डी भोज्य को देखकर राख के ढेर में छुपाता है तो उससे अग्नि का खतरा रहता है। सुनने वालों, अगर प्रवासी के पीछे रोए, अगर कोई अरे प्रियजन आता है और उसके पीछे पीछे जाए तो मृत्यु की संभावना रहती है। अगर प्रवासी को कुकू करता हुआ बार बार उसके गले मिले और उसकी प्रदक्षिणा करे तो अवश्य ही उसको जेल में जाना पड़ता है। और गोबर से लिपे चौक में आकर बोले तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने गीत सुना। अब गीत के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बता रही थी कि स्वप्न विज्ञान और उसमें कुत्ते के शकुन और अपशकुन। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कुत्ता अगर जगह को खो दे तो महान कष्ट, एक आंख से रोए कल्याण और शुभ, पर वासी के आगे मूत्र करके आ जाए कार्य में असफलता, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, गमन करता के सम्मुख आए धन धन्य की प्राप्ति, पर वासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए दोनों नेत्रों को नचाए मृत्यु सम कष्ट, पर वासी के आगे अपने दक्षिण ओरो को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी जगह को खोता है तो महान कष्ट होता है, अगर कुत्ता एक आंख से रोता है तो कल्याण और शुभ की प्राप्ति होती है, प्रवासी के आगे मूत्र करके आ जाए तो कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए और निश्चय रूप से उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, गमन कर्ता के सम्मुख आए तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए यानी दोनों कानों को हिलाए और दोनों आँखों को नचाए तो मृत्यु का समय कष्ट होता है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे अपने दक्षिण ओरू को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत की संभावना होती है। सुनने वालों,

तो मैं आप सबको बता रही थी कि कुत्ते के बारे में, कि अगर कुत्ता हमारे सामने आ जाए या सपने में आ जाए तो उससे क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं सुनने वालों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उदार को बार बार चाटे उसी दिन यमलोक की प्राप्ति। रोगी के सम्मुख अपनी पूँछ तथा अपना हृदय स्थल बार बार चाटे या सूंघे 2 या 3 दिन में उसकी मृत्यु। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता आंगन में आकर सो जाए फल की सिद्धि नहीं होती। किसी रोगी के सम्मुख कानों को फड़फड़ाकर शरीर समेट कर सो जाए रोगी शीघ्र यमलोक को चला जाता है। यदि रोगी के सम्मुख देह को समेट कर दोनों नेत्र बंद करके मुंह फड़फड़ा लंबा श्वास छोड़े यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेता है। किसी घर में जिसमें रोगी हो किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या रस्सी मुख में लेकर प्रवेश करे रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा।

सुनने वालों, इन सब बातों का ये मतलब है कि कुत्ता बार बार अपने को चाटे तो उसी दिन यम लोग की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और रोगी के सम्मुख यदि कुत्ता अपनी पूंछ अपने हृदय से बार बार लगाए, चाटे या सूंघे तो यो दो या तीन दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता घर के आंगन में आकर सो जाए तो फल की प्राप्ति होती है सुनने वालों। किसी रोगी के सम्मुख दोनों कानों को अगर हिलाता है और शरीर को समेटकर सो जाता है तो रोगी सीधे यमलोक को चला जाता है सुनने वालों। यदि रोगी के सम्मुख अपने शरीर को समेटकर और दोनों आँखें बंद करके और लंबा श्वास छोड़ता है तो यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेते हैं सुनने वालों। किसी घर में जिसमें रोगी हो या किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या किसी मुख में लेकर प्रवेश करें तो रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा सुनने वालों।

पर वासी के सम्मुख फिष्टा या सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर आगे आकर भाग जाए तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, थोड़ी दूर साथ चलकर पीछे लौट जाए, बहुत धन मिलने। पर वासी के सम्मुख पुष्प लेकर आए, अति विपुल संपदा मिले। यदि वह श्वन काला हो, कार्य नाश का सूचक। परवासी के संग दो बाई ओर चले, सुंदर स्त्री तथा धन प्राप्ति। यदि दाहिनी ओर चले, चोरी से धन की हानि। परवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी और को लेकर आ जाए, निश्चित ही चोर धन चुरा ले जाएगा। सुनने वालों,

का कुत्ता यात्री के सम्मुख बैठ जाए और सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर, तो इसका मतलब है उत्तम वस्तु की प्राप्ति, कि उसे कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होगी सुनने वालों। और कुत्ता अगर थोड़ी दूर चलकर पीछे वापस लौटाए तो बहुत सारा धन मिलता है सुनने वालों। और अगर कुत्ता फूल लेकर आए, अति विपुल संपदा और बहुत सारे धन प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर सुनने कुत्ता बाईं ओर चले तो सुंदर स्त्री और धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन की हानि, कि हमारा धन कोई चुरा लेगा सुनने वालों। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी को लेकर आगे आ जाए तब भी चोर को धन चुरा लेगा सुनने वालों।

यात्री के समक्ष ताजा हड्डी लेकर आए शुभ, सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए अशुभ, अपने शरीर को बार बार खुजाए कार्य में असफलता, दाई और जोड़ा साथ लेकर चले या आलिंगन करे तो स्त्री या धन की प्राप्ति, दाई ओर से बाई ओर को घुमाता हुआ चला जाए संग्राम में पराजय कार्य का नाश, क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप है बंधन मिलता है, कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे राजा धन छीन ले, गमन अथवा प्रवेश समय युद्धरत युद्ध में पराजय, प्रवासी को देखकर क्रोध से घूर घूर करे या भय से भौंके निश्चित रूप से धन हानि।

अपने शरीर को बार बार खारिज करता है तो कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। दाई ओर जोड़ा साथ लेकर चले और तो स्त्री या धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और कुत्ता दाई ओर से बाई ओर घूमता हुआ चले तो संग्राम में पराजय और कार्य का नाश होता है सुनने वालों। क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप एवं बंधन मिलता है। कुत्ता अरे क्रोध से गुस्से से आगे दौड़ा आए तो उससे श्राप मिलता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपना कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे तो राजधन सब छीन जाता है सुनने वालों। अगर कुत्ता घर में प्रवेश करे या रात में तो युद्ध में पराजय तो युद्ध में हानि मिलती है सुनने वालों। और अगर कुत्ता यात्री को देखकर क्रोध से घुर घुर की आवाज़ करे या भौंके तो निश्चित रूप से उससे धन की हानि होती है सुनने वालों। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो गीत अमिताभ बच्चन की फिल्म का था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रवासी के सम्मुख अपनी पीठ को सूंघ कर दांत अथवा नख से वस्त्र खींचे, धन का लाभ। प्रवासी के बाएं अथवा पीठ पीछे क्रूर शब्द करे, युद्ध में पराजय। एक आगे और पीछे भोंके अनेक दुख, पैरों को सूंघे शीघ्र यात्रा गमन हो। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए कार्य सिद्ध। जीभ से पेट को छुपाए लाभ, विष्टा करे या जमाई ले चिंता से मुक्त। याद रखें प्रवासी पुरुष हो तो कुत्ते का दायां अंग और प्रवासी कन्या हो तो कुत्ते के बाएं अंग को चेष्टाएं अनुकूल और शुभ होने वाली होती हैं। इसके विपरीत पर प्रतिकूल फल मिलता है। सुनने वालों, जो अभी मैंने आपको बताया तो इसमें ये था कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता यात्री की पीठ को सूंघे और अपने नखों से वस्त्र खींचे तो धन का लाभ होता है। सुनने वालों, और यात्रा पर अगर कोई जा रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे क्रूर शब्द करे यानी जोर से बोले तो युद्ध में पराजय होती है, और अगर पीछे पीछे भोंके तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। सुनने वालों, अगर पैरों को सूंघे तो शीघ्र यात्रा गमन हो, तो शीघ्र यात्रा पर चले जाना चाहिए। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए तो कार्य सिद्धि, तो कार्य सिद्ध होते हैं। सुनने वालों, जीभ से पेट को छुए तो लाभ मिलता है। सुनने वालों, विष्टा करे या जमाई ले तो चिंता से मुक्त, तो चिंता सारी दूर हो जाती है। सुनने वालों,

फल ले जाते हुए बाईं ओर, घर आते दाईं ओर मिले उपज अच्छी। जुआरी को जुआ खेलने जाते दाईं ओर मिले जुए में अत्यधिक लाभ। उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता, नींद लेता, मल त्याग करता, मिले तो लाभ प्राप्त। किसी गर्भवती के दाईं ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे पुत्र लाभ, यदि बाईं ओर ऐसा करे पुत्री का जन्म। मूत्र त्याग की बजाय प्रस्तन हो गर्भपात। सुनने वालों, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब स्वपन विज्ञान पुस्तक से निकाली जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, अगर कोई किसान हल ले जा रहा है और कुत्ता उसकी बाईं ओर आता दिखाई दे तो उपज अच्छी होगी, यानी कि उसकी फसल अच्छी होती है। सुनने वालों, जुआरी को जुआ खेलने जाते हुए दाईं ओर कुत्ता मिल जाए तो जुए में उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ, मल त्याग करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, और अगर किसी गर्भवती स्त्री की दाईं ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे तो पुत्र लाभ, यानी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यदि बाईं ओर ऐसा करें तो पुत्री का जन्म होता है। सुनने वालों, और मूत्र त्याग की बजाय प्रसन्न होकृत करे गर्भपात, अगर कुत्ता मूत्र त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो उस स्त्री का गर्भपात हो जाता है। सुनने वालों,

प्रवासी को नौकरी की तलाश हो, उसके दाएं और प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वासपात्र नौकर या उदार स्वामी मिले। चुल्लैया ऊंचे स्थान पर दाएं पैसे सिर खुजाए, इच्छित कार्य में सफलता। यदि ऊंचा स्थान मलबे का ढेर हो, कार्य सिद्धि। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ सिर उठाकर देखे और कान फड़फड़ाए, अशुभ है। मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी उछालते दिखे या हड्डी मुंह में दबाकर घुराते दिखे, भयंकर कष्ट। दाएं पैर से दाई आँख खुजाए, मित्र आगमन। यदि सर को खुजाए, अत्यंत प्रियजन का आगमन। गर्मी में छांव में बैठक घुराता है, मित्रों से लड़ाई। प्रवासी को नौकरी की तलाश और दाएं प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वासपात्र नौकर या उदार स्वामी मिलता है सुनने वालों। अगर ऊंचे स्थान पर कुत्ता बैठा है और अपने सिर को खुजाता है तो इच्छित कार्य में सफलता मिलती है सुनने वालों। यदि ऊंचे स्थान पर मलबे के ढेर पर बैठा है तो कार्य की सिद्धि होती है सुनने वालों। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी को उछालता है या मुंह में हड्डी दबाकर कुत्ता घुराता है तो उससे भयंकर कष्ट प्राप्त होता है सुनने वालों। दाएं पैर से दाई आँख को खुजाए तो मित्र का मिलन होता है सुनने वालों। यदि सर को खुजाए तो प्रियजन का आगमन

सुनने वालों, जो आज मैंने आप सबको बताया कुत्ते के शगुन अपशगुन के बारे में, ये पुस्तक स्वप्न विज्ञान से लिया गया और इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश गौतम जी।

बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। सुनने वालों, मैंने आप सबको जो आज का कुत्ते के बारे में बताया, तो आशा रखती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्वाहा रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ एंट्री देने वाले हैं शांता जी, फिर उसके बाद में बबली जी, और हमारे पैनल के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी जो इस समय बैठ चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे हम सब कार्यक्रम में एंट्री करते हैं और फिर कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ने वाले हम सब।
1: हाँ जी, कहते हैं कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाहर रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से स्वागत है और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।
2: दर्द कम करना है तो उसे समेट कर मत रखो, उसे बह जाने दो, क्योंकि आँखें हमारे दिल का आईना है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: बबली जी ने अभी दर्द की बात बताई है, तो दर्द ना चाहिए किसी को। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही विशाल कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम के जो रूपरेखा रहेगी,
0: तो रूपरेखा की ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, पहले हम चला देते हैं वो गीत जिनका इंतजार हमारे सभी सुनने वालों हर हफ्ता करते हैं।
3: हाँ,
0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार जिसका मन अभी उदास है। तो राम जी हम सबका बेड़ा पार तो अवश्य करते रहेंगे, पर पहले वो गीत जो हरिओम सरन जी ने हम सबको लिए छोड़कर गए हैं, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में विषय की ओर छलांग लगाते हैं।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। जब राम जी बेड़ा पार कर लेते हैं तो उदासी मन को न चाहे डरे किसी से। उदासी मन तब नहीं डरता जब किसी का बेड़ा पार हो जाता है। तो आज का जो विषय था हमारा पुराना समय और कनक भवन, अयोध्या का कनक भवन। तो अयोध्या का कनक भवन कैसे रहा इस बारे में बातचीत रहेगा, लेकिन उससे पहले पुराना समय कैसे रहता था उसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा, इसके बाद रहेगा विषय की ओर बढ़ेंगे आगे। तन ढकने को कपड़े न थे, फिर भी लोग तन ढकने का प्रयास करते थे। आज कपड़ों के भंडार हैं, फिर भी तन दिखाने का प्रयास करते हैं। समाज जो सभ्य हो गया है, जो समाज आजकल का वो थोड़ा सा अलग हो गया है, और उस हिसाब से ये कविता के माध्यम से समझाया जा रहा है। समय पुराना था, आवागमन के साधन कम थे, फिर भी लोग परिजनों से मिला करते थे। आज आवागमन के साधनों की भरमार है, फिर भी लोग न मिलने का बहाना बनाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने कह रहे थे कि पहले समय, जरूर समय बदल गया है, और ये भी हमें जानना है कि समय के साथ साथ कुछ कुछ चीज में भी तरक्की होता है ना।
0: हाँ,
1: और कुछ कुछ चीजें जो अब नया फैशन आ गया है, आजकल जींस जिसमें होल नहीं है वो कोई नहीं खरीदते।
0: हाँ,
1: शांता जी भी नहीं खरीदता
0: ना, कोई नहीं
1: ना। तो जीन्स जो हो और जिसमें छेद ना हो,
0: हाँ,
1: तो वो नहीं बिकेगा, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना।
0: ना,
1: तो जरूर संदेश हमारा ये है कि पहले जो नहीं था तो लोग अपना और बदन के लिए इतना व्यवस्था कर लेते थे, पर आजकल ये जो हो गया है कि फैशन ऐसा बन गया है जिसे जा करके बस कैसे कहा जाए इसे, कि शरीर दिखाने के लिए। कि
2: अगर हम सोचे देखे तो पहले जिनके पास कपड़ा नहीं होता था, गरीब जो होते थे, तो वो फटे पुराने बस पहन लेते थे। तो ये विज्ञान लोग जो है ना, जो डिजाइनर लोग हैं, वो जाकर वही सब चीज़ लेकर और यहाँ फैशन में डाल दी। तो कैसे कहे कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला गरीब है,
1: ये एक मुश्किल बात हो जाता है कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला, कैसे आपने कहा कि वो
2: गरीब वाला गरीब है।
1: हाँ, तो सोचने की बात हो जाता है। राजेंद्र जी, हमारा जो ये पुराना समय के बारे में आपने कुछ छेड़ी दिए है, तो जरूर आगे बढ़ते हैं कि क्या संदेश और है।
0: संदेश है कि समय जो पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, आज की बेटी पड़ोसी से ही असुरक्षित है। समय सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, लोग नगर मोहल्ले के बुजुर्गों का हालचाल पूछते थे, आज माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
1: समय जो सभ्य हो गया है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते, तो ये तो जरूर एक सोचने वाला बात है। पर क्या हम माँ बाप तथा अपने वृद्धों को और वृद्ध आश्रम में डालने से और बढ़िया होता है या उसके और खराबी होता है?
0: खराबी होता है माँ बाप को वृद्ध आश्रम में न चाहे डालना, उनका सेवा सत्कार अपने घर में ही चाहे करना, क्योंकि वो देखेंगे अपने परिवार को तो और लंबे समय तक जिएंगे और अच्छे से रह सकते हैं। जब वृद्ध आश्रम में जाते हैं तो वहाँ एकदम अकेले हो जाते हैं और उनको, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता होगा।
1: राजेंद्र जी, ये बात भी हो जाता है कि आप जब अपने घर से कितने यहाँ हॉलैंड में एक ऐसा देश है, यहाँ इतना ज़्यादा तादाद में व्यवस्था किया गया है ना कि आप अपने बुढ़ापे पे भी अपने घर से रह सकते हो।
0: हाँ।
1: और काफ़ी जैसे क्या बोले उसे शांता जी, आन लोइन वोनेगा, आन लोइन वोनेंगे तथा, और वहाँ आप अपने से खाना बना सकते हैं और अपने को सुरक्षित रह सकते हैं। पर ऐसा भी है कि कभी काल के जो हमारे यहाँ के आश्रमों बनाया गया है, जैसे हॉलैंड में, भारत में तो कुछ और तरीका से है, पर वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखा जाता है, कुछ कुछ एक्टिविटाइट रखा जाता है, जिसमें हमारे पुरखों तथा हमारे माँ बाप लोग और पिताए जा करके उसमें भाग ले सकते हैं ना, तो उसमें उसका दिल भी बहतनी हल्का होता कि नहीं?
0: हाँ, हल्का होता है।
1: दख बस्तेई देन उसे कहते हैं। और खास करके हॉलैंड में जितना व्यवस्था बनाया गया है हमारे बूढ़ों के लिए, अब वैसे तो यहाँ बूढ़ा किसी को कह देना, बुजुर्ग को किसी को कह देना, तो वो दूसरे आंखी से देखने लगता है। हाँ,
2: समय बदल गया।
1: तो पर फिर भी कहने के तात्पर्य यह है कि अरसाइन सौ फेल मोख लखे दे, जैसे कि हमारे बस आदि में पहले बस होते थे जिसे हम दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चढ़ के अंदर जाते थे, आजकल हमें हमारे बस ऐसा बना दिया गया है, हमारे त्रोतवार ऐसा बनाया जाता है जिसे हमें बिल्कुल तकलीफ ना हो। हॉलैंड में ऐसे बनते जा रहा है व्यवस्था और बढ़िया होते जा रहा है, पर ख़ास करके ये है कि गत दिनों कुछ व्हाट्सएप बरेख आया राजेंद्र जी हमारे पास, व्हाट्सएप बरेख आया, उसमें कहा कि भाई मैंने आज रात में बहुत देर से घर से निकला, तो मैंने मुझे ये लगा कि ये कह क्या रहे हैं, तो उन्होंने ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम को सुन करके और अपना बदलाव लाया है कि उन्होंने ये कहा हमसे, क्योंकि हमने समझा नहीं था, तो जरूर उनसे प्रश्न किया कि बात क्या है भाई, तो उन्होंने कहा कि रोज जो 6000 फुट स्थापना कहते हैं शांता जी, जो रोज करते हैं, तो रोज उन्होंने ऐसा किया, और आजकल हमारे शांता जी तो 9000 रोज रखते हैं ना।
0: ओ शांता जी थोड़ा ज्यादा करें,
1: थोड़ा से ज्यादा, पर ये जवान हैं और ज्यादा तादाद में कर सकते हैं। पर राजेंद्र जी क्यों ना हम एक अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम में हम सब और आगे जो पुराने बातें हैं, और फिर हमारा विषय जो आज है, विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाएंगे।
0: जरूर बढ़ते हैं, एक सुंदर सा जो गाना है, मोहे रंग दो लाल।

0: मोहे रंग दो लाल, बहुत ही बड़ा बढ़िया जो मनमोहक गाना रहा, बड़ा अच्छा, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। बात चल रही थी समय जो पुराना था, खिलौनों की कमी थी, फिर भी मोहल्ले भर के बच्चों के साथ खेला करते थे। आज खिलौनों की भरमार है, पर बच्चे मोबाइल की जकड़ में बंद हैं। समय जो कम था, समय जो सभ्य हो गया है।
1: ऐसे सुरीनाम में हम बताए ना, सुरीनाम में तो जैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, स्मेरोली के ब्लैक, पहले स्मेरोली ब्लैक में आते थे।
2: हाँ
1: संजीव जी, तो हमने देखे थे कैसे हमारे भाई, मेरे भाई लोग उसको गड़गाड़ी बना रहे थे। उन समय हम गड़गाड़ी बना रहे
2: थे, टायर होते थे ना,
0: हाँ टायर होते थे, एक और ऐसे बांध,
1: हाँ लकड़ी के साथ है और टायर उसमें बांध देते रसरी, ताकि उसको लिंक्स या रैक्स घुमा कर और चला सकते थे। ऐसे ऐसे हम लोग बना कर और उससे खेलते थे।
3: भारत में भी ऐसे था,
1: और कि तो
3: टायर होता है बांध, हाँ उससे खेलते लकड़ी करके,
1: एमर के ढपना ऐसे मिल जाए भी तो उसको बनाकर स्टीयर बनाकर और आंगन भर में ऐसे घूमते थे गाड़ी की तरह।
2: राजेंद्र जी, आपको शायद नहीं पता होगा, हम लोग बच्चे जब थे ना
0: जी,
2: तो सभी के घर से गाय होते थे ना, गाय बकरी होते थे, पर गाय बकरी भानने से पहले हम लोग बोतल गटाई में भान के भानते थे, चलाते थे ना,
0: हाँ।
2: तो वो भी समय था।
1: लुका चोरी हम खेल रहे थे भी, अलग खेलते थे, झूल खेलते थे उन समय पर। पर आज के बच्चे से तो जो पूछ तो वो क्या है उसको पता नहीं है।
4: भारत में भी बच्चे ज्यादातर गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, लुका छुपी सब ऐसे खेल खेलते थे, और लड़के ज्यादा कंचे।
0: वो तो आज भी रहता है ना,
4: हाँ जी कंचे हैं, लेकिन अब थोड़े दूसरे तरीके से खेलते हैं, पहले दूसरे तरीके से खेलते, गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा कहाँ खेलता है, कोई नहीं खेलता।
0: खेलते हैं, मैं तभी भी खेलता हूँ गाँव में जब जाता
4: हूँ। हाँ खाली गाँव में रह गए, बाकी शहरों में नहीं, शहरों में तो आजकल बच्चे नहीं खेलते।
0: समय पुराना था, गली मोहल्ले के पशुओं तक को रोटी दी जाती थी, आज पड़ोसी के बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है। समय पुराना था, पड़ोसी के घर में आए रिश्तेदार का भी पूरा परिचय पूछ लेते थे, आज तो पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। समय जो सभ्य हो गया है, वो आ रहे आधुनिक समय। क्यों ना हम एक सुंदर सा, संजय जी आप क्या बोलते हो समय के बारे में?
2: मैं तो बस यही कहना चाहूंगा राजेंद्र जी, कि समय के अंतर्गत क्यों ना एक सुंदर सा पिटारा शांता के जो लेकर आए हैं, आज काफी भारी है।
1: संजय जी आप जैसे समय के बात करते हैं ना, समय के बात, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि समय बदला या हम सब बदले।
4: समय तो वही है शांता जी, इंसान बदल गया।
1: हाँ वही, मैं मेरे दिमाग में ये हमेशा चलता है, हम सब हम हमेशा कहते कि समय बदल गए। समय तो वही है, क्योंकि सूर्य अभी वहीं से उगता है, चंद्रमा वहीं से उगता है, अभी तो वही समय पे सुबह होते हैं, वही समय शाम होते हैं, तो समय कैसे बदला? हाँ
0: शांता जी ने याद दिला दिया कि सूर्य वहीं से उगता है, चंद्र भी वहीं से उगता है, तो इसी उपलक्ष्य में एक गाना भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज बदला चांद ना बदला, लेकिन बदल गया इंसान। तो इंसान बदला है, सूरज चांद तो अपनी जगह है और प्रकृति सब वैसी ही है, केवल मनुष्य जो इंसान है वही बदला है।
2: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, और फिर गीत के बाद अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं कि अयोध्या की कनक भवन
0: जी जरूर,
2: ऐसा भवन वो, उनके बारे में काफी जानकारी यहाँ हमारे विशेषज्ञ लोग खोज करके रखे हुए है, तो अभी हम सभी सुनने वालों को लिए वो जरूर रखने वाले हैं। पहले एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे
0: जरूर।

0: जी हाँ, यहाँ मरना यहाँ। फिर तो बबली जी, आप कौन सा संदेश हमारे लिए रखे?
1: संदेश का विषय है प्रबंध।
0: तो प्रबंध बस सुना दीजिए हम सबको। प्रबंध के मतलब बोले तो
1: इंतजाम।
0: इंतजाम,
1: हाँ जी।
0: तो इंतजाम की कितने चीजों का हो सकता है ना राजेंद्र जी? प्रबंध जो हो गया तो आपको क्या और सुनाना है?
2: खरेखर
0: तो प्रबंध, शांता जी कहते हैं कि प्रबंध यानी कि आलस इशार खरेखर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्रबंध हो गया है तो बबली जी को सुनाना क्या है?
1: हाँ जी, तो अब मैं सुनाती हूँ। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते, और देर रात तो आते ही नहीं थे।
0: देर रात तो आते नहीं थे। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर ये संदेश जो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं आगे की ओर बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा विषय जो है आज का विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाने वाले हैं। पर बबली जी, अगर आपका कोई इतराज ना हो तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर ये कार्यक्रम ये संदेश को आगे बढ़ाएंगे।
1: हाँ जी जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं।
2: जरूर।

0: राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हरी क्या पाला, शोर मचाऊं गली गली। कहने का भाव ये है कि जो राम नाम के हीरे मोती हैं उसको भजना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, और गली गली में आप कहीं भी कर सकते हो। तो हरी का प्याला जो है एकदम अमृत समान है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हो, न चाहे तो आपके ऊपर। बबली जी, आप कुछ सुंदर सा उसकी तरफ बढ़ रहे थे।
1: हाँ जी।
0: तो ज़रूर आपका स्वागत।
1: इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे।
2: तो बबली जी, थोड़ा से फिर रिफ्रेश कि किसके बारे में बात हो रहा है, कि एक पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं ना।
1: हाँ जी।
2: पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, और पिता कि कभी काल के और मुसीबत आते हैं तो बच्चे उन्हें और सहयोग देते हैं, पर कभी कभी गोहराते रहते हैं पिता और बच्चे, जो सहयोग में थोड़ा से गड़बड़ हो जाता है ना।
1: हाँ जी। शुरू शुरू में बच्चे आते हैं रात को, और जब धीरे धीरे रात में बच्चों ने आना बंद कर दिया,
2: ऐसा
1: जब पिता आवाज़ लगाते हैं। हाँ जी।
2: तो आगे संदेश क्या है बबली जी?
1: अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था।
2: ऐसा होता है राजेंद्र जी, बुढ़ापा होने से कम दिखते?
0: हाँ, धीरे धीरे नज़र कम हो जाता है, पैर घुटना में चलना कम हो जाता है,
2: ऐसा
0: उम्र के अनुसार सब रहता है।
2: तो आगे ले चले बबली जी।
1: हाँ जी। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज़ का नियम हो गया। एक रात को उनको
2: हुआ क्या? तो जो लड़का आ रहा है उनके मदद करते हैं, ऐसा वो उसी का लड़का था?
1: हाँ जी, ये तो अभी आगे पता चलेगा।
2: अच्छा।
1: एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और एक कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं।
2: यानी कि वो बूढ़ा आदमी ने, वो जो व्यक्ति उनका मदद करते थे, वो लड़का के रूप में जो बिल्कुल उसकी लड़का की तरह, और वो उनके हाथ पकड़ के पूछते हैं कि ऐसा तो मेरा बेटा नहीं है, पर आप कौन हो?
1: हाँ जी,
2: ये प्रश्न रखते
1: हैं। हाँ जी, प्रश्न करते हैं। तो फिर अब वो उत्तर देंगे। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं, यदि मुझे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रबंध हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरे नाम का जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रबंध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रबंध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रबंध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रबंध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रबंध भुगतने फिर से आना होगा, यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रबंध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रबंध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रबंध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, तीव्र प्रबंध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रबंध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रबंधों को मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रबंध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर।
2: तो ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने अपने ओर से रखे, और राजेंद्र जी घड़ी देख रहा हूँ कि हमें उस ओर बढ़ना है जहाँ की हमारे परप्लेक्सिंग है, हम सबको कहते हैं कि न्यूज़ और कमर्शियल्स।
0: जरूर जरूर, बहुत ही सुंदर जो गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही नगमे सब लुटाता रहूं। तो संजय जी आप क्या कहते हैं, साथ देने का वादा करें तो?
3: तो मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ कि एक बार जो मैंने शुरुआत में कही तो वो मैं फिर एक बार कहती हूँ कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। तो ब्रेक से पहले तो बबली जी ने कहा कि जो आप भुगत रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। तो हम भी आज के दौर में भी देखें तो जो हमारे जो हम पिछले कर्म कर चुके हैं वो आज में हम भोगते हैं, और ऐसे ज्ञान पाते ही जो हम उसमें ये सुधार कर सकते हैं तो भी हम अपना सुधार कर ले, ताकि हमारे ऊपर जो विपत पड़े तो यही समझे कि इससे हम भोग ले, भोगने के बाद जो हम मर जाए तो उसके बाद जो हमारा जन्म हो ये पर्वत ये बात जो अपने आपने उसके अनुसार में बात करी तो जीवन शायद अलग से होगा,
4: वो चीज दोबारा नहीं भुगतनी पड़ेगी।
3: अगर हम ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे ऐसा प्रवचन ऐसे ऐसे बातें जो हम सुनते हैं तो हमको भी हिम्मत मिलता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी आते हैं तो ये एक कारण होगा, और इससे जो हम घबरा जाए तो हमारा जो राह है जो भटक जाएगा, हम खुद भटक जाएंगे। और ऐसे ऐसे बात जो सुनकर हम अपने को एक विश्वास ठान ले कि ना ये अंधेरा है, कुछ समय के लिए वो जरूर से थम जाएगा, उजाला आएगा, ऐसे हम देख रहे हैं।
2: शांता जी अपने ओर से जो सुंदर संदेश हम सबको सुनाए, जरूर दोस्तों इसमें मैं ये जरूर जोड़ देना चाहता हूँ कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। हमारे साथ राजेंद्र जी जो एक वृतांत दिल्ली शहर में हुआ था और उसे बांटने वाले हैं, तो राजेंद्र जी क्यों ना हमें वो वृतांत के ओर आप ले चले।
0: वृतांत का जो शीर्षक है वो है अपना काम खुद करें आत्मनिर्भर बने। बात एक समय की है जब दिल्ली से गोवा की उड़ान एक सज्जन जा रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 के पार ही होगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे।
2: राजेंद्र जी ये एक विशेष बात हो जाता है ना
0: जी,
2: कि भारत का जब आप जहाज यानी कि प्लेन से सफर करें तो ज्यादा तादाद में 1.5 घंटा में पहुंचा देते हैं ना।
0: हाँ 1.5-2 घंटा,
2: पर उसमें ये भारत के एक ऐसा पॉलिसी है कि चाहे जोन भी एजेंसी रहे
0: हाँ।
2: वो 1.5 घंटा में आपको गर्म खाना भी खिला देते।
0: हाँ वो खिला देते,
2: यहाँ पर तो चाय भी नहीं पूछते जो
0: हाँ, अलग अलग
2: किया था जो यहाँ से यूरोप के देश में
0: अलग अलग रकम रहा हर जगह का काम धाम। तो राजमा चावल जब वो खा रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक में भी उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार उन्हें देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो शिष्टाचार बस मैंने कहा लाइए, मैं खोल देता हूँ। सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा। ये सज्जन ने कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी, जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिशों के बाद अंततः उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक नियम बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी रोज़ की ज़रूरतों के केवल पत्नी ही मदद कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा, ये काम इससे करवा लूं, वो काम उससे, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पांव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। क्यों ना एक सुंदर सा नगमे की ओर बढ़े।
2: जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा की ओर हम लोग को जरूर बढ़ना है। और ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी सुनने वालों को कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। सुनने वालों आप सुनते रहना, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश का बस यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ सके। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: आ जाओ मेरे राम, बहुत ही जो सुंदर नगमा था, बहुत अच्छा ही लगा सब लोगों को। आप क्या कहते हैं शांता जी इस नगमे के बारे में?
1: ये गीत और भजन जो चलता है ना, आप इस पर जब गौर करें तो इसमें बहुत सारे संदेश आए। हाँ, सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनना बल्कि शब्द जो उसमें प्रयोग किया है, वो जग शब्द गाना के रूप में जो उसमें गाए हैं, अगर उसको आप सुनेंगे तो उसमें आप बहुत सारे लाभ निकाल सकते हैं।
2: राजेंद्र जी, आज का विषय जो हमारे है और उस ओर छलांग लगाना है हम सबको, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने सभी सुनने वालों को कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम छलांग लगाते हैं अपना विषय के ओर, विषय के ओर जो आज का है उस ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कनक भवन जो अयोध्या शहर में ना, राजेंद्र जी?
0: हाँ, कनक भवन से पहले अभी हम जो छलांग लगा चुके हैं
2: वो तो अभी पार करना है,
0: अभी पार करना है।
2: वो जूस का बोतल खुला कि नहीं खुला?
0: खुल गया जूस का बोतल।
2: मामा का बोतल नहीं खुला?
0: हाँ, मामा भी अपना जूस का बोतल खुद ही खोल लेता है,
2: आजकल खोल लेते हैं।
0: हाँ,
2: तो मामा का बोतल खुल गया दोस्तों, और अभी संदेश जो थोड़ा से बाकी है हम सब उस ओर बढ़ते हैं, फिर छलांग लगाते हैं विषय के ओर आज के।
0: सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए, एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा, फिर मन हमेशा यही कहेगा हम गोवा जा ही रहे हैं, दो दिन वहीं रहेंगे, हम महीने में एक दो बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया, अब सब कुछ बेटों को देकर अपने लिए महीने के लिए पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है, होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है, बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें ही खुल गई, मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही पलों में मैंने पूरे जीवन की फिल्म देख ली, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं ही करें, जैसे कि हमारे मामा जी करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, अपना गाड़ी लेके जाते हैं, दूसरों को भी घुमाते हैं, और इस प्रकार उनका जो ज़िंदगी है अभी पूरा 25 बरस और बचा हुआ है।
2: ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा भाग्य लिखते है। दोस्तों, हम अब छलांग लगाने वाले हैं जो आज का विषय, राजेंद्र जी विषय जो अयोध्या का कनक भवन, छलांग लगाते हैं फिर एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है।
0: समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम बढ़ते हैं श्री अयोध्या जी में कनक भवन की ओर। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धरता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर हैं जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। क्योंकि सबके सब फक्कड़ संत थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था, और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं।
2: रविंद्र जी, अभी तो आपने कहा वो बनिया ना,
0: पलटू बनिया,
2: पलटू,
0: हाँ,
2: तो बनिया किसको कहते हैं?
0: बनिया इसको कहते हैं जो बिजनेस करे,
2: बिजनेस,
0: हाँ,
2: जो गुप्ता होते हैं आदि,
0: हाँ, वो सब बनिया रहा।
2: बनिया,
0: ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, चार जाति रहा
2: ऐसा।
0: हाँ, तो बनिया का काम है बिजनेस करे,
2: बिजनेस करना।
0: अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए? कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज के कहलवाया कि भैया, आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीतांबर ओढ़ाया जाता था, तथा शयन आरती के बाद श्री रामचंद्र जी, राम प्रसाद जी, नित्य करीब एक घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे।
2: राजेंद्र जी, भजन सुनाने से पहले पीतांबर ओढ़ाया जाता था, तो पीतांबर माने तो?
0: पीतांबर मतलब एक पीला वस्त्र।
2: पीला वस्त्र,
0: हाँ। तो राम प्रसाद जी एक घंटा भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। क्यों ना एक सुंदर सा कनक भवन के दरवाजे पर पड़े रहो का भजन चलाया जाए,
2: चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: और हमारे मामा जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको भी प्रतीक्षा है।

0: कनक भवन का जो सुंदर सा भजन रहा, बहुत ही अच्छा मनमोहक रहा। कनक भवन दरवाजे पे पड़े रहो, यानी कनक भवन में भगवान राम और सब राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी और हनुमान जी रहते थे, इसलिए कहते उसके भवन में पड़े रहो तो भगवान के चरणों में आप सदा रहोगे, ये संदेश रहता है। तो क्यों ना हम आगे का संदेश अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी, राम प्रसाद जी की बात चल रही थी, वो सोने चले गए और धीरे धीरे रात बीतने लगी।
1: राजेंद्र जी, ये बात हुआ कि वो कनक भवन जो एक मंदिर है ना,
0: हाँ,
1: एक एक एक तीर्थ स्थान,
0: हाँ वहाँ पे है ना,
1: तो
0: अयोध्या में,
1: ये कहने के तात्पर्य ये संदेश ये देते हैं कि उस दिन कुछ चढ़ावा हुआ नहीं और उन्होंने बनिया के पास अपने व्यक्ति को भेजे ताकि, हाँ, कुछ उधार में लेता आए।
0: हाँ, एक दिन चढ़ावा ना चढ़ा तो उसने सोचा कि आज नहीं आया तो कुछ उधार लिया जाए, लेकिन जो बनिया रहा वो उधार ना दिए, तो सब लोग साधु संत लोग दिन में भी भूखे सो गए, रात को भी भूखे सो गए,
1: पानी पी कर सो गए,
0: पानी पी कर सो गए। ये चमत्कार सब भगवान ने किया। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, क्या भूत प्रेत आ गया वो बनिया घर का
0: है? जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाजा खोला, सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि चार लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है, ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था, 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई, हाय आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूं तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे, इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिए करेंगे, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए, वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहे सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए।
1: लो, पलटू बनिया का मन भी लो गए। तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम।
0: पलटू बनिया का मन भी लेके चले गए बच्चे।
1: पलटू बनिया का मन भी गया
0: गया।

0: बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गाना सुना है वो दो पल की ये दास्ता तो और तुम चले हम कहाँ। तो जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनिया को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे, अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई, आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुई। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वही भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे या तो ये अभाव ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया ऐसे ही हमारा भी कर दे जय। इस प्रकार से पलटू दास जी की जो कहानी रहा और हमारे जो भूतपूर्व डायरेक्टर रहे गांधी सेंटर के, वो कुछ अभी कहना चाहते हैं।
1: राजेंद्र जी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर जी जो
0: निर्मला जी, जो हमारे भारत से प्रोफेसर जी हैं, हमारे डॉक्टर निर्मला शर्मा जी, वो गांधी सेंटर के डायरेक्टर एम्बेसी ऑफ इंडिया में पहले 3 साल अपना कार्यक्रम पूरा करके यहाँ से भारत गए हैं और अब वो अपना एक संदेश हमें देना चाहते हैं भारत से ही दूरभाष की ओर से।
1: तो निर्मला जी आपको स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो में और जरूर आशा ये रखता हूँ कि कुछ छोटा सा संदेश आप हम सबको सुनाए।
2: संदेश तो नहीं, सब प्यारे बहनों और भाइयों जो सुन रहे हैं और मेरे प्यारे भाइयों जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। इतना खूबसूरत ये फहोर रेडियो का प्रोग्राम है, इतनी भारत से इतनी दूर तक ये फैला हुआ है और पुराने पुराने हिंदी के भारत के इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं आपको हमेशा। मैं बहुत खुश हूँ फहोर रेडियो से कि ऐसा लगता है जैसे भारत हम दूर नहीं आए थे, जब भारत में ही है, जब रेडियो स्टेशन में बैठते हैं इतने सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं आप लोग और पेश करते हैं और अपनी इच्छा पेश करते हैं कि ये सुनना चाहेंगे, इससे छाती एकदम गर्व खुशी से फूल जाती है। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि पहो रेडियो में पुराने पुराने भारतीय गीत, फिल्मों के गीत जीवित हैं फहो रेडियो की तरफ से। मैं फहो रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सब जो फरमाइश भेजते हैं उन सबको आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एंजॉय कीजिए और हिंदी गाने सुनते रहिए जो क्लासिक है, गोल्ड है इंडिया की, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द ओल्ड सॉन्ग, क्लासिक सॉन्ग्स, इसको सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को भारत से ही अपना पूरा संदेश भेजा। यहाँ पे जो हमारे 188 देशों में कार्यक्रम सुनाई देता है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का, रेडियो के और इंटरनेट के माध्यम से सब लोग आपको पूर्ण रूप से अच्छे से याद भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको अभी भी गांधी सेंटर में आते हैं मिलने के लिए, कुछ लोगों को पता नहीं कि आप चली गई हैं भारत में, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी नीदरलैंड आएंगे और सब लोगों से फिर दोबारा से मिलेंगे। इसी के साथ आपका फाहून हिंदुस्तानी रेडियो में बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हमारी जो डायरेक्टर रही गांधी सेंटर में पहले, उनका अभी भारत से एक संदेश सब लोगों ने सुना, और उसी संदेश का जो हम उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में जो बताया कि नीदरलैंड में भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं दूसरे देश में, क्योंकि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो इतने अच्छे से कार्यक्रम और अपना जो कल्चर का कार्यक्रम करता है उससे किसी को भी महसूस नहीं होता जो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे।
1: तो हम राजेंद्र जी वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
0: हाँ, गीत की ओर बढ़ते हैं
1: जिसका नाम लागी छूटे ना।
0: लागी छूटे ना अब तो,
1: और लागी छूटे ना अब तो सनम।
0: तो जैसे ही हमारा ये गाना बजता है लागी छूटे ना अब तो सनम, तो हमें पता चल जाता है सब लोगों को कि हमारा 2 घंटा पूर्ण हो चुका है।
1: और आज की कार्यक्रम जैसे कि सुनने वालों आप सभी ने सुने कि अयोध्या का कनक भवन, और राजेंद्र जी ये बात भी हो जाता है अयोध्या में कोई एक व्यक्ति है जो कितने सालों कितने अवस्था को हुए थे ना।
0: हाँ, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर है और उस मंदिर अभी तो बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। तो पुराने जमाने से बहुत, जब त्रेता युग से वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, लेकिन अब बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। उसके लिए सब लोगों ने पूरा दुनिया से सहयोग भी दिया और अभी बहुत सारे लोग अयोध्या देखने के लिए जाते हैं। जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो और भी ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, और हमारे जो हॉलैंड के, सूरीनाम के, गयाना के, मॉरिशस के लोग हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा रुचि रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हमारे सब भारतीय ही हैं और अपना कल्चर साथ लेके आए हैं, और भारत को तो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा उनका घर ही है। तो ज़रूर सब लोग उस तरफ चलेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हुए, बबली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: नहीं, लागी छूटे ना वो चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि
0: जी समय पे हमें सब काम करना चाहिए। समय समय की बात, समय बड़ा बलवान, अर्जुन लूटा भीलों ने वही धनुष वही बाण, तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

बड़ी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दीवाना है तेरा। एक बार फिर कहूंगी कि कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाउन रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से धन्यवाद साथ देने और सुनने के लिए। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

लागी छूटे ना अब तो सनम, छूटे तो ना लेकिन अब समय का हमारा जो समय हो जाता है वो तो छूट ही जाएगा, तो हमें समय पे अपना काम पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाहून हिंदुस्तानी के, जो कि इस प्रकार से हमें बड़े प्रेम से सुनते हैं अपना समय निकालकर, और उनको कुछ ना कुछ जो संदेश हम लोग देते हैं उनके अपने जीवन में लाने से हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, और उसको चाहे कंटिन्यू ऐसे ही हमको सुनते रहिए। तब तक के लिए अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता केमाई, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे, और भारत देश से प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी जो अपने ओर से भारत से सहयोग दिए कार्यक्रम में। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।